को कहत है साध जाना तन तन अपना तापियो हर जपना जपना निमक जापियो अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना जा को रे कर्म भला तिन उठ गई संत भला तिन नाही रे जम संतावै साधु की संगना पायो रे परम निधान मिट्यो है बिमान एक निरंकार नानक मन लगना धनासरी महला पांजवा कार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे काल कलेश लो मोह मह भव जल तारे रहा सास सास निमक निमक दिन रह दिन सरैन चितारे सास संग जप निसंग मन

राम नाम शाद अमृत काहे विख खाई, तज परम करम बेदन खेद राम नाम लेही, गौर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नींद खदाई, ऊपर मंडल छाए मार कंडे ते को अधकाई, जिन त्रिण तर मूल बलाए बलाए, हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्व करत हो, बिन सजाए झूठी देही, रहाओ मेरी मेरी कैरो करते, दुर्योधन से पाई, बारे जोजन छतर चले था, देही गर्जन खाई, सर्व सोन की लंका होती, रावण से अधकाई, कहाँ पे उधर बांधे हाथी, खिन में पे ही पराई, दुर्वासा स्यों कर तठोरी, जादव ए फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए, दास बैरागन मुहे वसकीनी, पंचो का मिट नावो, सतर दोए परे अमृत सार, बिख को मार कढावो, पाछे बहर न आवन पावो, अमृत बाणी कट दे उचरो, आत्म को समझावो, रहाओ बजर कुठार मोहे है छीना, कर मेहनत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तभी छूटो, जो माया ने लपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तह तज दर्शन पावो, इत कर पवत करे जो जान, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम दियो बार क्या परमो, ए संजम हर पाई है, मार वाड़ जैसे नीर वाला, बेल वाला कर हला, ज्यों करंक निस नाद वाला, त्यों मेरे मन रामैया, तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो, अत रंग रूड़ो मेरो रमैया, रहाओ ज्यों तरनी को इंद्र वाला, कुसुम वास जैसे कबरला, ज्यों को किल क्यों अम्ब वाला, त्यों मेरे मन रामैया, चकवी को जैसे सूर वाला, मान सरोवर हंसला, ज्यों तरनी को कंत वाला, त्यों मेरे मन रामैया, बारक को जैसे खीर खीर वाला, चातरक मुख

अपरमिया जाके स्वा बचनई अये मैये एक आन जियो। पिंदी उबकले संसारा प्रम प्रम आए तुम चे द्वारा तू कुन रे।

लागिले तूर गोविंद चरणन की। सुर नार मुन जन तिन हुते दूर रहाओ, दीन का दयाल माधव गर्भ पर हारी। चरण शरण नामा बल तिहारी। तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हर सर दीन दयाल न तुम सर

तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम लै तुझे को चारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल लै।

कर्म कर खार्म पीट सरी दादी ले लंका गढ़ ओपाड़ी ले रावण बाण साल विसल आन तोखी ले हरी कर्म कर कशोटी मफी।

रहाओ। उत्तम धीरा निर्मल बाती, तू ही निरंजन कबला पाती। रामा भगत नामानंद जाने, पूरन परमानंद बखाने। मदन मूरतन पै तार गोविंदे, सैन पने पज परमानंदे। पिपा कायो देवा कायो देवल, कायो जंगम जाती। कायो धूप दीप निविदा, कायो पूजो पाती। काया वो खंड खोजते नव निद पाई। ना कशे जाय वो ना कशे ना किश आए वो ना किश जाए वो, राम की दुहाई। रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावै। पीपा प्रणवे परम तत् है, सतगुरु के लखावै। धन्ना गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते। तिनके काज सवारता, रहाओ दाल सीता मांगो कियो। हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया शादन नीका, आनाज मंगो सत सीका। गो पैस मंगो लावेरी, इक ताजन तुरी चंगेरी। करकी गीहन चंगी, जंतन ना ले वै मंगी। जैत श्री महला चौथा, घर पहला चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे हीरे रतन नाम हर वसिया। गुर हाथ तरियो मेरे माथा, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे। गुर नाम दियो विन लाथा, मेरे मन पाज राम नाम सब अर्था। गुर पूरे हर नाम।

साधु वर मिलिए हीर पर आखा रहाओ मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन कर रतन ना लाखा ते उजड़ परम मुए गावारी माया प्यंगम विख चाखा हर हर साध मिलो जन के हर साधु सरन हम राखा।

जैत श्री महला चौथा। हम बारक कछु न जाने, गत नित तेरे मूर्ख मुगधियाना। हर कृपा कर दीजे मत उत्तम, कर लीजे मुगध सियाना। मेरा मन आलसिया उगलाना, हर हर आन मलाई।

सागर पावको जो संत पे टेबड भाग जन नानक सर्व सुख पाए मेरो हर चरनी चित लाग जय श्री महल्ला पंजवा मन में सतगुरु ज्ञान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जीव मया करा रहा काल जाल अर महा छंजाला छुटके जमे डरा आयो दुख हरण शरण करना पत गयो चरण आसरा नाभ रूप पयो सा संपा मिद पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा को नानक अजर जरा जय श्री महल्ला पंजमा जाको पै गोबिंद सहाय सुख सहज आनंद मंगल स्यो बाको व्यापन काई रहाओ दिसे सत्संग रहे अलेपा नियम व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई दया मया ठाकुर पा ठाकुर की सेई संस पाई तन के संग नानक निस्तरिये जिन रस रस हर गुण गाई जय श्री महल्ला पंजमा गोविंद जीवन प्राण धन रूप ज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रप्रीतम चरण कमल अनूप अनक बार करो जिते बंधन मने चिरावो धूप हार पर्यो द्वारे हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गई लूप तुम्हारी लूप काल लियो नानक अपने को संसार पावक के कूप जय श्री महल्ला पंजमा कोई जन हर स्यो देवे जोर चन गहो बको सुगर सुना दीजे प्राण अको रहाओ मन तन निर्मल करत प्यारो हर सिंचे सदा संजो ए रस में मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवो तुमरी ओर अभय पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर जय श्री महल्ला पंजमा चातरिक चितवित बरसत में कृपा सिंध करना प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक जो सूख चक भी नहीं चाहत आनंद पूर्ण प्रभ पेख दही आन उपाव न जीवत मीना बिंजल मर न तेही हम अनाथ नाथ हर शरणी अपनी कृपा करें चरण कमल नानक आराध्य तिस बिन आन न कहें जय श्री महल्ला पंजमा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग भेटे पूर्ण पुरख सुजान रहाओ प्रेम टकोरी जिनको पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कह न जाई कुदरत कवन हमारी लाए लय लड़ दास जन अपने उदरे उदरन हारो उदरन उदरे उदरन हारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महल्ला पंजमा आए अनक जन भ्रम शरणी उदर दियो अंध कूप ते लाभो अपनी चरनी रहाओ ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना नाहे निर्मल करनी सात संगत के अंचल लावो मिकन दी जय करनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरनी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग अपरनी जय श्री महल्ला पंजमा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निक न आवे पूर्ण दास के काम रहा कोट बिघन बिन से हर सेवा नेचल गोबिंद ताम भगवंत भक्त को पौ किश नाही आदर देवत जाम ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिन सतखाम चन कमल हृदय गहो नानक सुख समूह विश्राम जय श्री महल्ला नौमा इक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उर जायो जो जो कर्म की हो लालच लग ते आप बंधायो रहाओ सामिन परी बिखे रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जान्यो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के भीतर ताको ज्ञान न पायो जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जय श्री महल्ला नौमा हर जू राख लियो पत मेरी जमको त्रास पयो और अंतर शरण गई कृपा निध तेरी रहाओ महापत्ते तो मुग्ध लोभी फुन करत पाप अवहारा

0: शांति।
1: श्री राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माय सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सह सेति मनो जिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्द उता गाओ हरि केरा मन जिने वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरे तू सदा रहो हरनाले हरना रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कर सब सुवारना सबना गला समरस स्वामी सुख मन विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब किसै जिस दे सो पावे सदा सिव सला तेरी।

तिसकी धूड़ मन उदरे, प्रभ होए सो प्रसन्ना। श्लोक अनक लीला राज रस रूपं, छतर चमर तख्त आसनं, रचंत मूड अज्ञान अंधे, नानक सुपन मनोरथ माया, सुपने हब रंग माया, मिठा लगड़ा मोह, नानक नाम बिहूनिया, सुंदर माया त्रोह पौड़ी, सुपने सेती चित मोर खलाया, बिसरे राज रस भोग जगत पखलाया, आरजा गई बिहाय तंदे ताया, पूर्ण भय न काम मोया माया, क्या बेचारा जंत जा आप भुलाया। श्लोक बसंत स्वर्ग लोकें जिते, पृथ्वी नव खंडने विश्रांत, हर गोपाला नानक ते प्राणी उद्यान भ्रमणे, कौतक कोट तमाशा जितना आवस नाओ, नानक कोड़ी नरक बराबरे, उजड़ सोई थाओ पौड़ी, महाप्यान उद्यान नगर कर मान्या, झूठ समगरी पेक सच कर जान्या, काम क्रोध अहंकार फिरे देवान्या, सिर लगा जम डंड ता पछतान्या, बिन पूरे गुरुदेव फिरे शैतान्या। श्लोक राज कपटम रूप कपटम धन कपटम कुल कर बतै, सचंत विखिया शलंग छिद्रंग, नानक बिन हर संग न चालते, पेखंदड़ो की भुल तुम्मा दिसन सोना, अड नाल हंदड़ो मुल नानक साथ न जली माया पौड़ी, चलद्यां नाल न चलदे सो क्यों संजिए, तिसका कहो क्या जतन तिसते बंजिए, हर बिसरे क्यों तृप्तावे ना मन रंजिए, प्रभ छोड़ अन लागे नरक समझिए, हो कृपाल दयाल नानक पौ भंजिए। श्लोक नाच राज सुख मिष्टन, नाच भोग रस मिष्टन, नाच मिष्टन सुख माया, मिष्टन साध संग हर नानक, दास मिष्टक प्रभ दर्शन, लगड़ा सो नेहो मान मजाहूं रत्या, बिदड़ो सच ठोक नानक, मिठड़ा सो तनी पौड़ी, हर बिन कछु न लागी भगतन को मीठा, आन स्वाद सब फीकिया कर नौनो निरनो डिठा, अज्ञान भरम दुख कटिया गुर भय बिसीठा, चन कमल मन बीदिया ज्यो रंग मजीठा, ज्यो प्राण तन धन प्रभु बिसरे सब झूठा। श्लोक त्यागत जलंग ने जीव मीनंग ने त्याग, चात्रिक मेहि मेघ खंड मंडल, बाण बेदंच करांक नादंग अलबंधन, कुसुम वासने चन कमल रचंत संता, नानक आन न रुचते, मुख दिखाऊं पालक छड आन न दे योचित, जीवन संगम तिस तनी हर नानक संता मित पौड़ी, ज्यो मछली बिन पाणी ज्यो जीवन पावे, बूंद भी होना चात्र क्यों कर तृप्तावे, नाद कुरंके बेदया सन उठ सन मुख उठ तावे, भवर लोभी कुसुम वास का मिल आप बंधावे, जो संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावे। श्लोक चितवंत चरण कमलन सास सास आराधन, नै बिश्रांत नाम अचुत नानक आस पूर्ण परमेश्वर, सीतड़ा मन मंजाहे पलक न थीवे बारा, नानक आसली निवाहे सदा पिखंदो सच धनी पौड़ी, आसा बंती आस गुसाई पूरी है, मिल गोपाल गोबिंद न प्रभु झूरी है, देहो दस मन चाओ लै जाए बिसूरी है, होए पवित्र शरीर चरण धूरी है, पार ब्रह्म गुण देव सदा हजूरी है। श्लोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है, नानक तिन संग बलिहारे, जिना ध्यान पार ब्रह्मण है, हब कुड़ावे कम इक साई बाहरे, नानक से ही धन जिना पिरड़ी सच सिं पौड़ी, सत बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा, पूरे ते प्रधान निवाहे प्रमथा, हर जस लिखे बेअंत सोहे से हथा, चन पनीत पवित्र चाले प्रमथा, संता संग उधार सगना दुख लथा। श्लोक भावी उदोत करण हरमण संजोग पूर्ण, गोपाल दास पेटंग सफल नानक सो मुहूर्त है, कीम न सका पाए सुख मिती हूँ बारे, नानक सा बेलड़ी परवान जित में लंदड़ो माँ पेरी पौड़ी, साबे लाको कौन है जित प्रभ को पाई,
ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਲਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਗਸਾਈ ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਧਿਆਈ ਕੈ ਮਨ ਇਛ ਪਜਾਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਤ ਸਤ ਸੰਗ ਹੋਏ ਨਿਵਲਾਗਾ ਪਾਈ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਬਲ ਜਾਈ ਸਲੋਕ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸਰਬ ਦੋਖ ਨਿਵਾਰਣ ਸ਼ਰਨ ਸੂਰ ਭਗਵਾਨੇ ਜਪੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਛੱਡਿਓ ਹਬ ਆਪ ਲਗੜੋ ਚਰਨਾ ਪਾਸ ਰਥੜੋ ਦੁੱਖ ਤਾਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਪੇ ਖੰਦਿਆਂ ਪੌੜੀ ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਿਆਲ ਢਹਿ ਪੈ ਦੁਆਰਿਆ ਰੱਖ ਲੇ ਬੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਤੇਰਾ ਬਿਰਧ ਹਰ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਿਆ ਤੁਝਮੇਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਬਿਨਾ ਮੋਹ ਸਾਰਿਆ ਕਰ ਗਿਆ ਲਿਓ ਦਿਆਲ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਿਆ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਉਦਰੰਗ ਦਿਆਲੰਗ ਆਸਰੰਗ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਿਰਮਲੰਗ ਸੰਤ ਸੰਗਿਣ ਨਾਵਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਮੁੱਲ ਨ ਮਿਟੀ ਧਾਮ ਨਾਨਕ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਪੌੜੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਓਟ ਉਧਰੇ ਸਗਲ ਜਨ ਸੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਤੋਟ ਨ ਆਵੇ ਮੂਲ ਸੰਚਿਆ ਨਾਮ ਧਨ ਸੰਤ ਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਪਾਈਏ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਹਰ ਜਸ ਨਿਤ ਸੁਣ ਸਲੋਕ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੁਖਰਨ ਉਚਰਨ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਦਇਆਲ ਪੁਰ ਭਗਵਾਨ ਨਾਨਕ ਲਿਪ ਨ ਮਾਇਆ ਭਾਏ ਬਲੰਦੜੀ ਬੁੱਝ ਗਈ ਰਖੰਦੜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਣੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ ਪੌੜੀ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਦਿਆਲ ਨ ਵਿਆਪੇ ਮਾਇਆ ਕੋਟ ਅਗਾ ਗਏ ਨਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਇਆ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਸਰੀਰ ਜੰਤੂਰੀ ਨਾਇਆ ਮੰਤਨ ਭੈ ਸੰਤੋਖ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਸੰਗ ਲੋਕ ਕੁਲ ਸਵਾਇਆ ਸਲੋਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰ ਦਿਆਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣ ਭੌਜਲ ਬਿਖਮ ਅਸਗਾਹਾ ਗੁਰ ਬੋਹਿ ਤੇ ਤਰੀਆਮ ਨਾਨਕ ਪੂਰ ਕਰਮ

हम कहियत कल जुग के कमी, इन पंचन मेर मन जु बिगारियो, पल पल हर जी के अंतर पारियो, जत देखो तत दुख की रासी, अजो न पत्याय निगम पैसा की, गौतम नार उपामत स्वामी, सीस तरन सहस पगमी, इंदु तन खल बद कर मारियो, बड़ो निलाज अज नहीं हारियो, कह रब दास कहाँ कैसे कीजे, बिन रघुरात शरण का की लीजे, इक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सह भंग गुर प्रसाद, राग टोडी महला चौथा घर पहला, हर बिन रह न सके मन मेरा, मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मिले, बहुर न पव जल फेरा रहाओ, मेरे हियरे रोच रगी पब के।

कृपा निध बसो हृदय हरनी, तैसी बुद्ध करो परगासा, लागे प्रभ संग प्रीत रहा, दास तुम्हारे की पावो तूरा।

जो पर आई सो अपने मनुआ, नाम संगी सो मन ना बिसार बिसायो, छोड़ जाए बाहु चित लायो, सो संचयो जित भूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो, काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरिया, टोडी महला पंजवा, हमारे एक हरी हरी, आन अवर सियान ना करी, रहाओ वड़े भाग गुरु अपना पायो, गुरमो को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप बरत नेमा, हर हर त्याय कुशल सब खेमा, अचार बिहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जन ठाकुर पाया, सब किछ तिस के ग्रह में आया, टोडी महला पंजवा, घर चौथा दोप दे एक ओंकार।

पाहे संजोयो रहे। सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले प्राशत मिट्यो रहे। जांको लहनो महराज री गाठड़ियो जन नानक घर बासना पयोड़े रहे। टोडी महला पंजवां घर पंजवां दोप दे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ऐसो गुण है मेरो प्रभ जी कीन पंच दोख अरहंग रोग एह तांते

फला दर्शन गुरु डीठे रहाओ, गुण गावत चुत अपनासी, काम क्रोध बिनसे मद डीठे, अस्थिर पय साच रंग राते, जन्म मरण बाहुर नहीं पीठे, बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे।

कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतित पवित पहे राम कहत कहत ही रहाओ राम संग नाम देव देव जन को प्रतिज्ञा आई एकादशी व्रत रहे काहे को तीर्थ जाई पनत नाम देव सुकृत सो मत पहे गुरमत राम कह को ना बेखुंट गए तीन छंदे खेल आछे रहाओ कुमार के कर हांडी हाछे रहा रह।

राम श्याम गोविंद गो राग बैराड़ी महला चौथा घर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे भज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण जस उत्तम खट दर्शन गावे राम शंकर कह करोड़ तेतीस ध्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम सुन नर सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिन को ते संत भले हर नाम बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुरु सतगुरु दान दिवायो रहाओ तिस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपे तिस देवो जिन हर मीत मिलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर पेटे स्वामी दुख होमे रोग गवायो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो किस करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे हर आपे पंच तत्व सितारा विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुरु मेले आपे हर आपे चगर चुकावे बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निसतारा कोट कुटंतर कहे पाप सब खोवे हर पवजल पार उतारा रहाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भव निर्वैर निरंकारा हर निकट बस्त कछ

उधर्म जा रहा। सो ऐसा हर सेवे मेरे मन हर अंत श्रावण हारा, जाके हृदय बसया मेरा हर हर तिस जन को करो नमस्कारा। हर कृपा ते पाइये हर जप नानक नाम अधारा। बैराड़ी महला चौथा, जप मन हर हर नाम नित ध्याए, जो इच्छे सोई फल पावे फिर दुख ना लागे आए। रहाओ सो जप सो तप सा भरत पूजा, जित हर स्यों प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन में बिसर सब जाए। तो बेअंत सर्ब कल पूरा, किच कीमत कहीं ना जाए। नानक सरन तुम्हारी हर जियो पावे तिवे छडाए। राग बैराड़ी महला पंजवा, घर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। रहाओ जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्ब सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। राग तलंग महला पहला, घर पहला एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद। जक अर्ज गुफ्तम पेस तो, दर गोस कुन करतार। हका कह कबीर करीम तो, ऐब परवदगार। दुनिया मकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मोए अजराइल। गिरफत दिल हेच ना दानी, रहाओ जन पिसर पदर बिरादरा। कस नेस दस्तगीर, आखर ब्याफतम कासना दारद चुंग। मन मम ई चिनी है वाल, बद बखत हम चो बखील। गाफिल बेन जर बेबाक, नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पा खाक। तलंग महला पहला, घर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। पौ तेरा पाग खलड़ी मेरा चीत, मैं देवाना पया अतीत। कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत। तो दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीख्या पाए। रहाओ केसर कुसुम गमे हर हरना सर्ब शरीरी चढ़ना। चंदन भगता जोत ए नहीं सर्बे परमल करना। किया पट भांडा कहे ना कोए, ऐसा भगत वर्ण मैं होए। तेरे नाम निमें रहे लिवलाए, नानक तिन दर भीख्या पाए। तलंग महला पहला, घर तीजा एक ओंकार सतगुरु।

काया रंगण जे थिए प्यारे पाइए नाम जीठ रंगण वाला जे रंग साहिब ऐसा रंग न दीठ जिनके चोल हिरतड़े प्यारे एकांत तना के पास धूड़ तना की जे मिले जी कह नानक की अरदास आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक अंते नानक कामण कंते पावे आपे ही रावे तलंग महला पहला यानड़िये मानड़ा काए करे आप नड़े कर हर रंगो की ना माने सो नेड़े तन कमलिए।

मास पुरे विच आख मसोला जिन उपाए रह रंग रवाए बैठा वेखे वख अकेला सच्चा सो साहेब सच तपावस सचड़ा न्याओ करेग मसोला काया कपड़ टुक टुक होसी हिंदुस्तान समाल सी ए बोला आवन अठत्रे जान सतान में होर भी उठसी मर्द का चेला सच की बाणी नानक आखे सच सुनाई सी सच की बेला तलंग महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब आए हुक्म खसमा हो हुक्म सब वर्तने सच साहेब साचा खेल सब हर तने सलाहे सच सब ऊपर हर तने जिस नाहे कोई सरीक किस लेख होंगने रहाओ पौन पानी धरती आकाश घर मंदिर हर बने ने बिच वरते नानक आप झूठ कहो क्या गने तलंग महला चौथा नित नैफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतियां जब आहा आने हैं बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितियां ऐसा बाजी संसार न

तेरा नाम है दुख मिटन हारा, गुर सेवा ते पाईए गुरमुख निस्तारा, जो हर नाम त्याय दे ते जन परवाना, तिन विट्टो नानक बारिया सदा सदा कुर्बाना, साहा तेरी उस्तत है जो हर प्रभ पावे, जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर पल पावे, जिना हर सेती पिरही तिन जी प्रभ नाले, ओ जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले, जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया, ओ आप छुटे परवार स्यों सब जगत छड़ाया, गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तन्नो, गुर हर मारक दसिया गुर पन बड़ पुन्नो, जो गुरु सिख गुर सेव दे से पुन्न प्राणी, जन नानक तिन को बारिया सदा सदा कुर्बानी, गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पाइया, हर दरगे पनाइया हर आप गल लाइया, जो गुरमुख नाम त्याय दे तिन दर्शन दीजे, तिन हम तिन के चरण पखाल दे तूड़ कोल कोल पीजे, पान सपारी खातियां मुख बीड़ियां लाइया, हर हर कदे न चेतियो जम पकड़ चलाइया, जिन हर नामा हर चेतिया हिरदे उर तारे, तिन जम नीर न आवी गुर सिख गुर प्यारे, हर का नाम दान है कोई गुरमुख जाने, नानक जिन सतगुर पेटिया रंग रलिया माने, सतगुर दाता आखिए तुस करे पसाओ, होंगुर विटो सदवारिया जिंद तड़ा नाओ, सो तन गुरु सबासे हर दे स्नेहा, हो बेक बेक गुर बिकसिया गुर सतगुर देहा, गुर रसना अमृत बोलदी हर नाम सहावी, जिन सुन सिखा गुर मनिया तिना भुख सब जावी, हर का मार्ग आखिए कौ कित विद जाइए, हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए, जिन गुरमुख हर अराध्या सीसा वरदानी, हो सतगुरु को सदबारिया।

गीत ले मैं दिन मैं निस दिन में प्राणी छिन छिन औद पे हाथ है फूटे कट ज्यो पानी रहाओ हर गुण काए ना गावी मूर्ख ज्ञाना झूठे लाल चला के ने मरण पछाना अजू कुछ बिगड़ियो नहीं जो प्रभ गुण गावे कौ नानक ते भजन ते निरपय पद पावे तलंग महला नौमा जाग लियो रे मना जाग लियो कहंगा फल सोया जो तन उपजिया संग पी सो पी संग न होया रहाओ मात पिता सुत बंद जन हित जास्यो कीना जो छूटियो जब दे ते डार गगन में दीना जीव तलियो बेहार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाय ले सब स

जय विद गुरु उपदेसिया सो सुनु रे पाई, नानक कहत पकार के गह प्रभ शरनाई। तलंग बाणी भक्तां की कबीर जी इक ओंकार, सतगुर प्रसाद बेद कते विफतरा, भाई दिल का फिक्र न जाए। टुक धुम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए। ये जो दुनिया सेर दे मेला दस्तगीरी नाहे राव, द्रोग पढ़ पढ़ खुशी होए बै खबर बाद बकाए। हक सच खालक खलक मियाने स्याम मूरत नाए, असमान मिहाने लहंग दरिया गुसल कर दनबूद। कर फकर दायम लाए चश्मे जह तहां मौजूद, अल्लाह पाकं पाक है स करो जे दूसर होए। कबीर करम करीम का ओ करे जाने सोए, नाम देव जी मैं अंदले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है अदारा, रहाओ करीमा रहीमा ला तू गनी। हाजरा चूर दर पेस तू मनी, दरिया तू दहिन तू बसियार तू तनी। दे ले एक तू दिगर को नहीं, तू दाना तू बिना मैं बचार क्या करी। नामे चे स्वामी बख्शंद तू हरी, हले जा रा खुशखबरी। बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीकी तेरी बगारी आले तेरा नाओ रहाओ। कुजा आमद कुजा रफ्ती कुजा मैं रवि, द्वारका नगरी रास भोगोई खूब तेरी पगरी। मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल, चंदी हजार आलम।

कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद राग सुई महला पहला चौप दे कर पहला पांडा तोय वैस धूपो देवो तो दूधे को जाओ दूध करम पुन सुरत समायन होई नरास जमाओ जपो ता एको नामा अवरन राफल कामा रहाओ ए मन ईटी हाथ करो पुनेत्रो नींद न आवे रसना नाम जपो तब मथिये इन विद अमृत पावो मन संपर्जित सत सरनावन पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जो सेवे इन विद साहेब द्रव्त रहे कहंदे कह कह कह जावा तुम सर अवर न कोई भगत ही नानक जन जापे हो सलाई सच्चा सोई सुई महला पहला कर दूजाई कोमकार सतगुर प्रसाद अंतर वसे न बाहर जाए अमृत छोड़ काहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे हो वो चाकर साचे केरे रहाओ ज्ञान त्यान सब कोई रवे बांधन बाध्या सब जग पवे सेवा करे सो चाकर होए जल थल मैया रव रिया सोए हमने चंगे बुराने कोई परंत नानक तारे सोए सुई महला पहला कर शीमा इक ओंकार सतगुर प्रसाद उज्जल कहे चिलक चिलकना कोटम कालड़ी मस तोतिया जूठ न उतरे जे सो धोवा तो तिस सज्जन से नाल में चलदिया नाल चलन जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दसन रहाओ कोठे मंडप माड़िया पासो जित विहा खंडिया कम न आवनी बिचो सखनिया बगे बगे बग्गा बग्गे कपड़े मीरथ तीरथ मज वसन कुटकुट जिया खावने बग्गे ना कहियन सिमल रुक शरीर में मैजन देख पुलन से पल कम न आवनी ते गुण में तन हन अंदले पार उठाया डूगर बाट बहुत लखी अखी लोड़ी ना लहा हो चढ़ लंगा कित चाकरिया चंगियाईया अवर सियाणप कित नानक नाम समाल तू बद्दा छुटे जित सुई महला पहला जप तप काबंद बेलड़ा जित लंगे बेला ना सरवर ना उछले ऐसा पंत सहेला तेरो एको नाम जीटा रता मेरा चोला सदरंग टोला रहाओ सज्जन चले प्यारिया क्यों मिला होई जे गुण होवे गठिया मिलेगा सोई मिलिया होए न विछड़े जे मिलिया होई आवा गौण नवारिया है सच्चा सोई होमे मार नवारिया सीता है चोला गुरबचनी पल पाया सहके अमृत बोला नानक कहे सहेलियो सो खरा प्यारा हमसे केरिया दासियां साचा खसम हमारा सोई महला पहला जिनको पांडे बहुत ना सवार सी सुखी करे पसाओ दुख बसार सी सहसा मूले ना सर पर तार सी तिना मिलिया गुर आए जिनको लिखिया अमृत हर का ना उदेवे दिखिया चले सतगुर पाए पवे न पिखिया जाको मैल हजूर दूजे निवे किस दर दरवाणी नाए मूले पुछते से छूटे ताके बोहल साहेब नदर जिस कले आने आप जिस नाही दूजा मते कोई टाए उसारे सा जाने सब सोए नाओ नानक बख्शी नदरी करम होए सोई महला पहला पांडा अच्छा सोए जो तिस पाव सी पांडा अत मलीन तोता अच्छा ना होए सी गुरुद्वारे होए सो जी पाए सी ईत द्वारे तो अच्छा होए सी मैले अच्छे का विचार आप विरताए सी मत को जाने जाए अगे पाए सी जे हे कर्म कराए ते हा होए सी अमृत हर का नाव आप वरताए सी चलिया पत स्यो जन्म सवार बाजा वा ऐसी मानस क्या विचार तै लोक सुनाई सी नानक आप निहाल सब कुल तार सी सुई महला पहला जोगी होवे जोगवे भोगी होवे खाए तपिया होवे तप करे तीरथ मल मल नाए तेरा सदरा सनी जे पाई जे को कहे बहे अलाए रहाओ

तैसो जैसा काढ़िए जैसी कार कमाए जो दम चित ना भी सो दम व्यर्था जाए ए तन बेची बेकरी जे को लय बकाए नानक कम ना आवनी जित तन नाही सच्चा नाओ सोई महला पहला कर सतमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग न खिंता जोग न डंडे जोग न पसम चढ़ाइए जोग न मुंदी मुंड बढ़ाइए जोग न सिंगी बाइए अंजन माए निरंजन लइए जोग जुग दिव पाइए गली जोग न होई एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कहिए सोई रहाओ जोग न बाहर मड़ी मसाणी जोग न ताड़ी लाइए जोग न देश संतर पविए जोग न तीर्थ नाइए अंजन माए निरंजन लइए जोग जुग दिव पाइए सतगुर पेटे ते सहसा टूटे तावत वर्ज रहाइए निजर चरे सहज धन लागे कर ही परचा पाइए अंजन माए निरंजन रहिए जोग जुग दिव पाइए नानक जीवतियां मरइए ऐसा जोग कमाइए बाजे बाजो संगी बाजे तो निरपो पद पाइए अंजन माए निरंजन रहिए जोग जुगत्यों पाइए सोई महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरे कवन सराह बलावा कौन गुरु के पै देख्या लेवा कै पै मुल करावा मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तू जल थल मैयल परपुर लीना तू वापे सर्व समाना राव मन तराजी चितुला तेरी सेव सराप कमावा कटही पीतर सो तोली इनविद चितर वावा आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा आपे देखे आपे बूझे आपे है वणजारा अंदला नीच जात परदेसी खिनावे दिल जावे ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मूड़ा पावे राग सुई महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर राम नाम राध्या गुर शब्द गुरु गुर कह सब इच्छा मंतन पूरियां सब चूका डर जम कह मेरे मन गुण गावो राम नाम हर कह गुरु तुठे मन प्रबोधिया हर पिया रस घट कह रहा सतसंगत उत्तम सतगुर केरी गुण गावे हर प्रभ के हर कृपा तार मेलो सतसंग हम तोबो पग जन के राम नाम सब है राम नामा रस गुर मत रस रस के हर अमृत हर जल पाया सब लाती तिस तिस के हमरी जात पात गुर सतगुर हम बेचो सिर गुर के जन नानक नाम परियो गुर चेला गुर राखो ला जन के सुई महला चौथा हर हर नाम पजियो परखो तुम सब बिनसे दालक दलगा पौ जन्म मरना मिट्यो गुर शब्दी हर अस्थिर सेव सुख समगा मेरे मन पज राम नाम पिरगा मैं मन तन अर्प तरियो गुर आगे सिर बेच लियो मुल मैं गाराओ नरपत राजे रंग रस माने बिन नामे पकड़ खड़े सब खलगा तरम राय सिर डंड लगाना फिर पछताने हथ पलगा हर राख राख जन किरमत मारे शरनाकत पुरख प्रत पलगा दर्शन संत देव सुख पावे प्रभ लोच पूर जन तुमगा तुम समरत परख वडे प्रभ स्वामी मोको कीजे दान हर निमगा जन नानक नाम मिले सुख पावे हम नाम बिटो सदकुमका सुई महला चौथा हर नामा हर रंग है हर रंग मजीठे रंग गुरु तुठे हर रंग चाड़िया फिर बौड़ न हो भी पंग मेरे मन राम नाम कर रंग गुरु तुठे हर उपदेसिया हर पेटिया राओ न संग रहाओ मुद्दे आनी मन मुखी फिर आवन जाना अंग हर प्रभ चित न आयो मन दूजा पौ सैलंग हम मैल परे दो चारियां हर राखो अंगी अंग गुर अमृत सरन वालिया सब लाथे किलवक पंग हर दीना दीन दयाल प्रभ सत्संग मेलो संग मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मंतन रंग सुई महला चौथा हर हर करे नित कपट कमावे हिरदा शुद्धन होई आंदे कर्म करे ब थेरे सुपने सुख न होई ज्ञानी गुरबिन भक्त न होई कोरे रंग कदे न चढ़े जय लोचे सब कोई रहाओ जब तब संजम वर्त करे पूजा मनमुख रोग न जाई अंतर रोग महाबाना दूजे पाए खवाई बार पेख बहुत चित्राई मनुआ दे दिस्तावे होमे व्यापया शब्द न जीने फिर जूनी आवे नानक नदर करे सो बूजे सो जन नाम त्याए गुर प्रसादी एको बूजे एक समाए समाए सुई महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद
ਗੁਰਮਤ ਨਗਰੀ ਖੋਜ ਖੁਜਾਈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸਾਈ, ਤਿਸਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਖਿਨ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸਭ ਭੁੱਖ ਗਵਾਈ, ਰਹਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਗੁਣ ਨਾਮ ਦੜਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਢੂੰਡ ਟਡਾਈ, ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹਰ ਸਪਾਈ, ਤੁਰਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਰ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਮੇਲੇ ਹਰ ਪਾਈ, ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਣੇ, ਰਹਾਉ ਹਰ ਰੰਗ ਕੋ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ ਹੋਈ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਦ ਨਰ ਕੋ ਰਾਹ ਹੋਏ, ਜੇਸੋ ਲੋਚੇ ਰੰਗ ਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਰੰਗ ਸਮਾਵੇ, ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜੇਵਾ ਹਰ ਰਸ ਰਹੀ ਅਗਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ, ਹਰਸ ਜਨ ਚਾਖੋ ਜੇ ਪਾਈ, ਤੌਕਤ ਅੰਤ ਸਾਧਲ ਵਾਈ, ਰਹਾਓ ਗੁਰਮਤ ਰਸ ਰਾਖੋ ਰਤਾਰ, ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਮੁਰਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਹਰਸ ਚਾਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਹੋਮ

एक दिखलाई सांग उतार थमियो पसारा तभी कोई कुंकारा कवन रूप दृष्टो बिनसायो कते गियो ओ कते आयो रहाओ जलते उठे अनिक तरंगा कनिक पूखन की ने बोरंगा बीज भी देख्यो बहु प्रकारा फल पाए ते कंकारा सैस कटा में एक कास कट फूटे ते उही पर गास परम लोभ मोह माया विकार परम छूटे ते कंकार ओपनासी बिनसत नाही ना को आवे ना को जाई गुरपूरे हो में मल तोई कौ नानक मेरी परम गत होई सुई महला पंजमा कीता लोड़े सो प्रभ होए तुझ बिंदु जाना ही गोए जो जन सेवे तिस पूरन काज दास अपने की राखो लाज तेरी शरण पूरन दयाला तुझ बिन कवन करे प्रतपाला रहाओ जल थल मैयर दया परपूर निकट वसे नाही प्रभ दूर लोक पत्यारे कछु न पाइये साच लगे ता हमें जाइये जिसनु लाए ले सो लागे ज्ञान रतन अंतर तिस जागे दुर्मत जाए परम पद पाए गुर प्रसादी नाम त्याए दो कर जोड़ करो अरदास सुध पावे ता आने दास कर कृपा अपनी भक्ति लाए जन नानक प्रभ सदा त्याए सुई महला पंजमा तन सुहागन जो प्रभु पछाणे माने हुकम तजेव माने प्यो सो राती रलिया माने सुन सकिए प्रभ मिलन सानी मन तन अर्प तज ला जिलकानी रहाओ सखी सहेली को समझावे सोई कमावे जो प्रभ पावे सासहागण अंग समावे गर्भ गहेली महल न पावे फिर पछतावे जब रैन बिहावे कर्महीन मन मुख दुख पावे बिनो करो करी जे जाना दूर प्रभ बना सीरिया प्रभु।

सगल समग्री में कर की जोड़ी, आस प्यासी फिर को लोड़ी, कवन कहां गुण कंत प्यारे, सुगढ़ स्वरूप दयाल मुरारे राव, सात श्रृंगार पौ पंजन पाया, अमृत नाथ बोल मुख खाया, कंगन वस्त्र गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे ता फिर कर आवे, गुण कावन कर कंतर जाया, वस कर लीना गुर परम चकाया, सब ते ऊंचा मंदर मेरा, सब कावन त्यागी प्रभु प्रीतम मेरा, प्रगटिया सूर ज्योत जियारा, सेज बिशाई सरद पारा, नव रंग लाल सेज रावण आया, जना नानक पिर तन मिल सुख पाया, सोई महला पंजवा, उमक्यो हो मिलन प्रवताई, खोद चरियो देखो प्रह जाई, सुनत सदेसरो प्रह ग्रह सेज बिशाई, परम परम आयो तो नदर न पाई, किन विद हीरो तीरे निमाना, मिल साजन हो तुझको तुझ कुरबानो रहाओ, एका सेज विशी तन कंता, तन सूती फिर सद जगंता, पियो मधुरो तन मतवंता, तन जागे से फिर पलंता, पई नरासी बहु दिन लागे, देश संतर में सगले चागे, खिन रहन न पावो बिन पग पागे, होए कृपा प्रभ मिलो सपागे, पियो कृपाल सत्संग मिलाया, बूजी तप्त करी पिराया, सगल शिंगार हुने मुझे सुहाया, कौन आने गुर परम चुकाया, जय देखा तै फिर है पाई, खोलो खोलियो कपाड़ता, मन ठहराई रहाओ, दूजा सोई महला पंजवा, क्या गुण तेरे सार संभाली, मैं निर्गुण के दर तारे, बै खरीद क्या करे चुतराई, यो जो पिंड सब थारे, लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन, तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ, प्रभदाता मोदीन पखारी, तुम सदा सदा पकारे, सो कुछ नाही जय मैं ते हो, मेरे ठाकर अगम पारे, क्या सेव कमावो क्या कह जावो, बिद कित पावो दर सारे, मत नहीं पाइये अंत न लइये, मन तरसे चरनारे, पावो दान ढीठ होए मांगो, मुख लागे संत रह नारे, जन नानको गुर कृपा तारी, प्रभाते निस्तारे, सुई महला पंजवा कर तीजा, इक ओंकार सतगुर प्रसाद,

दूसर हुआ ना को हुई, जप नानक प्रभ एको सोई। सोई महला पंजमा, सिमर सिमर ता को हो जीवा, चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा। सोहर मेरा अंतर जामी, भक्त जना के संग स्वामी राव। सुन सुन अमृत नाम त्यावा, आठ पैर तेरे गुण गावा। पेख पेख लीला मन अनंदा, गुण अपार प्रभ परमानंदा। जागे सिमरन कुछ पौ न व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुई महला पंजमा, गुर के बचन हृदय ध्यान दारी। रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूर दर्शन बलिहारी। चरण कमल मन प्राण अदारी, रहाओ साध संग जन मरण निवारी। अमृत कथा सुन करन अदारी, काम क्रोध लो मोद जारी। दृढ़ नाम दान इशनान सुचारी, कौन नानके तत् विचारी। राम नाम जप पार उतारी, सुई महला पंजमा। लो मोह मगन अपराधी, करन हार की सेवना सादी। पतित पावन प्रभ नाम तुम्हारे, राख लियो मोह निर्गुण यारे। रहाओ तू दाता प्रभ अंतर जामी, काची दे मानक भवानी। स्वाद बाद ईरख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया। दुख भजन जग जीवन हराया, सगल त्याग नानक शरणाया। सोई महला पंजमा, पेखत चाखत कहियत अंधा। सुनियत सुनिए नाही, निकट वस्त को जाने दूर। पापी पाप कमाई, जो किश कर जित छुटे प्राणी। हर हर नाम जप अमृत बाणी, राव कोर मैल सदा रंग रंग राता। संगत मारे कछु न जाता, राखे पोचार माटी का पांडा। अत कुचील मिले जम डांडा, काम क्रोध लो मोह बादा। महागर्त मैंने घर्त जाता, नानक की अरदास सुनीजे। डूबत पान प्रभ मेरे लीजे, सुई महला पंजमा। जीवत मरे बुझे प्रभ सोए, तिस जन कर्म प्राप्त होए। सुन साजनियो दुतर तरिय, मिल साधु हर नाम उचरिये। रहाओ एक बिना दू जाने जाने, कट कट अंतर पार ब्रह्म पशाने। जो कुछ करे सोई पल माने, आद अंत की कीमत जाने। कौ नानक तिस जन बलियारी, जाके हृदय वसे मरारी। सुई महला पंजमा, गुर परमेश्वर करने हार। सगल श्रेष्ठ को दे आधार, गुर के चरण कमल मन त्याए। दुख दर स्तन ते जाए, रहाओ पब जल डूबत सत गुर का डे। जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात। सुख सहज मन आवे शांत, सत गुर के रैन बड़ भागी पावे। नानक गुर को सद बल जावे, सुई महला पंजमा। गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पैर हर हर जस गाइए। सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल कटाका अंतर जामी। रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत। संत प्रसाद

स्वामी नाम हरस दीजे राम, नाम दीजे दान कीजे विसर नाही एक खिनो, गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइये अंदनो, जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजे, बिनवंत नानक इश पुनी पेख दर्शन जीजे। राग सुही महला पंजवा, शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संभल थकी जी ओह कदे ना बोले कौरा, कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान ने, औगण को ना चितारे पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नाही पन्ने काले, घट घट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा, नानक दास दा शरणागत हर अमृत स्वामी मेरा, हर अमृत सज्जन मेरा, नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा। हो बिसम पई जी हर दर्शन देख पारा, मेरा संदर स्वामी जी हो चरण कमल पग शारा, प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, इस जेव डबर ना कोई, आद अंत मध प्रभ रविया, जल थल मई अल सोई, चरण कमल जप सागर तरिया, भव जल उतरे पारा, नानक सरन पूर्ण परमेश्वर तेरा अंत ना पारा बारा। हर निमुख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण धारो, उर सतगुर कहा जी सच्चा अगम विचारो, मिल साधु दीना ता नाम लीना, जन्म मरण दुख नाठे, सहज सुख आनंद कनेरे, होमे बिनती गाठे, सबके मध सब होते बहार, राग दोख ते न्यारो, नानक दास गोविंद शरण आई, हर प्रीतम मने सुधारो, मैं खोजत खोजत जी हर नेचल सो कर पाया, सब सब अतरुभ डिठे जियो, चरण कमल चितलाया, प्रभु विनाशी हो तिस की दासी, मरे न आवे जाए, धर्म अर्थ काम सब पूर्ण, मन चिंदी इश पजाए, सुरत सिमरत गुण गावे करते, सिद्ध साधक मुन जन त्याया, नानक सन कृपा निज स्वामी बड़ भागी हर हर गाया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, वार सूही की श्लोका नाल, महला तीजा श्लोक महला तीजा, सूहे वेस दुहागनी पार पिर रावण जाए, पिर छोड़िया घर अपने मोही दूजे पाए, मिठा कर कह खाया बोसा दो बदिया रोग, सुध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए बिजोग, गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती सा सिगार, सहज सच पिर राविया हर नामा उरतार, आज्ञाकारी सदा सुहागण आप मेली करतार, नानक पिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार, सूही महला तीजा सुहविये ने माणिए सो सौ सदा संभाल, नानक जन्म सवारे अपना कुल पी छुट्टी नाल पौड़ी, आपे तख्त रचायोन आकाश पताला, हुक्मे धरती साजियन सच्ची धर्मशाला, आप पाए खपाए दा सच्चे दीन दयाला, सबना रिजक संभाहेदा तेरा हुक्म निराला, आपे आप बरतदा आपे प्रतपाला, श्लोक महला तीजा, सुहब ता सुहागनी जा मन लह सच नाओ, सतगुर अपना मनाए लै रूप चढ़ी ता अगला दूजा नाही था हो, ऐसा सिगार बनाए तू मैला कदे ना हो गई, एन सलाग है पाओ, नानक सुहागण का क्या चिन्ह है, अंदर सच मुख उजला खसमे माहे समाए, महला तीजा लोकावे हो सुहवी सुहा वेस करी, वेसी सहो ना पाई कर कर वेस रही, नानक तिनी सह पाया जिनी गुर की सिख सुनी, ज्योत सभावे सो थिया इन विद कंत मिली पौड़ी, हुक्मी श्रेष्ठ साजियन बहुपित संसारा, तेरा हुक्म न जापी केतड़ा सच्चे लख पारा, इकना नो तू मेल है गुर शब्द बिचारा, सच रत्ते से निर्मले होमे तज वेकारा, जिस तू मेले सो तुद मिले सोई सचियारा,
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੂਹੀ ਹੈ ਸੂਹਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਖਿਨ ਮੈਂ ਝੂਠ ਸਭ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਜਿਉ ਟਿਕੇ ਨਾ ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਓ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਜੋ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਸਚੜਾਓ ਉਲਟੀ ਸਖਤ ਸਿਵੇ ਘਰ ਆਈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਓ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਇਸ ਲਹਿ ਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇਈ ਰੰਡ ਬੈਠੀ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਮੁੰਦ ਆਣੀ ਦੁਮਣੀ ਸੂਹੈ ਵੇਸ ਲੁਭਾਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਰ ਪੈ ਭਾਏ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜੇ ਚੱਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਨ ਆਪ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਤਿਸਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਈ ਸਭ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਰਮਾਈ ਮਨ ਮੁਖ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਈ ਨੀ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਸਭ ਚੱਲੇ ਰਜਾਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੂਹੈ ਵੇਸ ਕਾਮਣ ਕੁਲਖਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਪਰ ਪੁਰਖ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਉਸ ਸੀਲ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਖੁਆਰ ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਪਧਾਰ ਸੂਹਾ ਬੇਸ ਸਭ ਉਤਾਰ ਧਰੇ ਗਲ ਪਹਿਰੇ ਖਿਮਾ ਸਿਗਾਰ ਪਈਐ ਸਹੁਰੇ ਬਹੁ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ਤਿਸ ਪੂਜ ਕਰੇ ਸਭ ਸਹਿ ਸਾਰ ਉਹ ਰਲਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਰ ਲੈ ਜਿਸ ਰਾਵੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਸ ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ

छुआ सब के कुछ ते तेरी सब सुनाई हीरांत न जाना मेरे साहब मैं अंदले क्या चतराई क्या हो कथी कथे का देखा मैं कथ न कथ न जाए जो तुझ पावे सोई अखा तिल तेरी वड्याई इते कु करो बेगाना भौका स्तन ताई भगत ही नानक जे होएगा ता खसमे नाओ न जाई बलावल महला पहला मन मंदिर तन बेस कलंदर घाटी तीर्थ नावा एक शब्द मेरे प्राण वास्ते बहुत जन्म नयावा मन बेदया दयाल छेती मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम नाई चिंत पराई रहो अगम गोचर लख पारा चिंता करो मारी जल तल मेयर भरपुर लीना कटका जो तुम्हारी

सब कोई करो दिखावे गया ना। आपे गुरु चेला है आपे गुणी नदाना, ज्यो आप चलाए तवे कोई चाले, ज्यो हर भावे भगवाना। कहत नानक तू साचा साहु कौन जाने, तेरे काम एक ना कर मैं देव डियाई। एक भरम भवे अभिमाना बलावल मरला तीजो, पूरा तट बनाया पूरे वेखो एक समाना, इस पर पंच मैं सच।

जो नटवा तंत बजाए तांते तो बाजे हे जानत जना जप मन राम नाम रसना। मस्तक लिखत लिखे गुर पाया हरे दे अर बसना रहा माया कृत प्रमत प्राणी रख ले वो जन अपना। ज्यो प्रहलाद नाशक रसिवा राखी और सरना। कबर कमर के गतमर कई हर किए पत पवन्ना। हो ढोवे ढोर हाथ चम चमरे हर उदरियो परे सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पव तारण हम पापी राख पपना। हर दासन दास दासन करियो जन नानक दास दासना। बलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध ज्ञान मति संदार्थ पुरख जन्मा।

बहुपूर्म दुर्मत मैल परा तुमरी सेवा करना साके प्रभाम क्यों कर्म उतरा मेरे मन जब नरह नाम नरहर ज्ञान ऊपर कृपा प्रतारी मेरे सतगुर पार परा रहो मेरे पिता ठाकुर प्रभु स्वामी हर देव मती जस करा तुमरे संग लगे से उतर जो संग काठ लो तरा साक्त नर होची मत माधम जिन हर सेव न करा ते नर भागहीन दो चारी ओ जन्म हुए फिर मरा जिनको तुम हर मिलो स्वामी ते नहाय सो गुरसरा दुर्म

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग बिलावल महला चौथा पड़ताल करते रमा। बोलो भैया राम नाम पद पावन वर संत भगत तारन वर पर पुरे रहा जल थले राम नाम नित गाई है दुख बसार नु राव हर किया सफल जन्म हमारा हर जपया दुख बसार नारा गुर पेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मेरे संगति गुण गावन मर राम नाम करयासा पाव दूजा बिन सुबनासा विच आसा होए नासी सो जन मिले हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो राग बलावल महला पंजवा चौपदी कर पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद।

क्यों तरिये विखिया संसार सतगुर बहुत पावे पारहाउ कौन तुलारे माया दे हर के पग सदा थिर से हर सुखते रह नरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा पाया बेण माया सर्प भयंगा होमे पचे दीपक देख पतंगा सगल शिगार करे नहीं पावे जा होए कृपाल ता गुरु मलावे और फिरों दासी मैं कर रतन दसाया निर्मोलक हीरा मिले ना पाया हर का मंदिर तस्मै लाल गुर खोल लिया पड़दा देख पही निहाल जिन चाख्या तस आया साधियों गूंगा मन में बसमाल अंधरूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया बलावल महला पंजवा सर्व कल्याण किए गुरदेव सेवक अपनी लायो से विघ्न लागे जप लख भेव तत् प्रीत पई गुण गाए दुत गए हर नाम त्याई रहाउ सबनी थाई रवि आपा जुगा जाका बड प्रताप गुर प्रसाद ना होए संताप गुर के चन लगे मन मीठे निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे सब सुख पाए सब दूठे पार ब्रह्म प्रभ रखवाले जिथे किथे दिशे नाले नानक दास खासम प्रत पाले बिलावल महला पंजवा सुख दान प्रीतम प्रा मेरे अगंत कुण ठाकर प्रभ तेरे वह नाथ तुमरी सनाई कर कृपा हर चरण के आई दया करो बसो मन आए वह निर्गुण लीजे लड़ लाई राओ प्रभ चित आवे त कैसी पीड़ हर सेवक नाही जम पी सर्व दुख हर सिमरत नस जाके संग सदा प्रभ बसे प्रभ का नाम मन तन आधार बिसरत नाम होवत तनसार प्रभ चित आए पूर्ण सब काज हर बिसरत सब का मोहताज चरण कमल संग लागी प्रीत बिसर गई सब दुर्म तरीत मन तन अंतर हर हर मंत नानक भगतन कै घर सदा आनंद राग बलावल महला पंजवा कर दूजा जानड़िए कै घर गावना एक ओ अंकार

पशु प्रेत मद उतारे पान पार उतारे नानक दा तेरी सनाई सदा सदा बलहार बलावल महला पंजवा विखे वन फीका त्यागरी सखिए ना मारस पियू मेरा चाके बुड़गी सगरी सुखी न उत जियो मान महत ना सकते काई साधां दा सिथियो नानक से दरसो बाबा ते जो प्रो अपने की अर्चन दौरी चेत भ्रम सखिए मृग तृष्णा दुन छाया चंचल संग न चालती सखी अंत तज जावत माया रस भोगण अत रूप रस मत तिन संग सुख न पाया धन तन हर साधन सखिए नानक जिनी नाम त्याया जाए बसो बगड़ भागनी सखिए जाए बसो बड़ भागनी सखिए संतां संग समाइए तै दुख न भुख न रोग व्यापे चरण कमल लाइए तै जन्म न मरना आवण जाना जिस चिर साडी पाईए प्रेम बिछोड़ना मोह व्यापे नानक हर एक ते आई है दृढ़ धार मन बेदिया प्यारे अतले सह सुखाए से सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाए सखी सहेली राम रंग राती मन तने बजाए नानक चरज चरज संभलिया कहना कृष्ण जाए राग बलावल महला पंजवा कर चौथा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद एक रूप सगलो पसारा पे वांझा बिहार ऐसो ज्ञान बेलोई पाए जात जात जाइए तत लिटाए रहाउ अनक रंग निर्गुण एक रंगा पे जल आपी तिरंगा आपी मंदिर आपी सेवा आपी पुजारी आपी देवा आपी युग आपी युगता नानक प्रभ शादी मुक्ता बलावर मल्ला पंजवा आप पावन आप सधारना आप करावन दोष न लैना अपन बचन आप ही करना अपन विभव आप ही जरना राहु आप ही मस्त आप ही बुरना आप ही शल न जाई शरणा आप ही गौट आप अर्कना आप ही घट घट आप लिपना आपे अवगते आप संरचना को नानक प्रभ के सब जचना बलावल मल्ला पंजवा तूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा

राखो अपनी सन प्रभ मोहे कृपा थारे सेवा कछु न जानू नीच मूर्ख हारे मान करो तो दूपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे राव हम आप गण करे असाखनी तुम निर्धुंद तारे दासी संगत प्रभु त्यागे कर्म हमारे तुम देव सबके दया का तार हम कित कन्हारे लाग परे ते दान सुन चित खसमारी तुरते बार किस नहीं पा काटना।

त्याग संत संसम आभूषा शासन विषयन कतिन ताव सफलदा सुन गुर भेटिय मानवो मटावो शासन तोख दया धर्म शिगार बनावो सफल सुहागण नानका अपने प्रभावो बलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना साहब मैं प्रगटाया जिस जन हुआ साध संगत भेटे हराया ए प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया अनक बातां सब कर रहे गुर घर लै आया रहाओ सन परे की राखता नाही सहसाया करम भूम हर नाम बोए अवसर दुल पाया अंतर जामी प्रभाव सब करे कराया पत्र

प्रियमतृप्ताशयाताकाचरस्वाद आप मुक्त संगीत हरे कुलकुटाबोधारी सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबार नीचा नाथ जान मैं निर्गुण गुणहीन नानक कृपा पई दास अपना कीन बलावल मल्ला पंजो हर भक्ता का आसरा नहीं ठाऊ तान दीवान परवार तन प्रवतीरा नाओ कर कृपा प्रवापणी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसी रहाउ संता इरतिहावना दूसर को नाहे एक सागे बेनती रव्या सर्वथाय कथा प्रातन यो सुनी भक्तन की बाणी सगल दोष खंड खंड किए जन लिए मानी सत वचन नानक कही परख समाही प्रभ के सेवक संत प्रभ ताको पो नाही बलावल महला पंजवा बंधन काटे सो प्रभु जाके कलहाथ अपर करने

एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद मेरे मोहन श्रवणीय न सुनाए साक्त गीत नाद धुन गावत बोल तो बोल जाए रहाओ सेव सेव सेव साध सेव

तृप्त गाय पी प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात जन सन नान प्रभ दे कर कृपा संसंग मला तुला मला पंजवा रख ली अपने जन आप कर कृपा हरा नाम दीनो मैं गैसा सो

प्राण पे आरो मने धारो चीत चीत वो जैसे पान तुम्बोली राव सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम खलागो जो बट भागो सुहागा मारो कतो ना डोली रूप ना धूप ना गंध ना दीपा उत्पोते अंग अंग संग मौली को नान प्रवि सुहागन नाथ।

जो मोहन साहब के संगे ना कहू सगल परी पून पूरी हो कृपा ने दो को नानक मेरी पूरी परी बलावल महला पंजवा मन क्या कहता हो क्या कहता जान प्रवीण ठाकुर प्रा मेरे ते स्यागे क्या कहता रहा अनबोले को तू ही बछाने जो जीवन में उतारी मन काहे कहाँ लौटे की जो पेकती संसुनता है सो

दुष्ट बराई गुरपुरे का जपया जाप कहाँ करे कोई बेचारा राम मेरे का बड़ प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया चन रख चन कम रख मन।

युवपिन धन रास भरा तेरी तू सुमरत सुनामी मेरा दास अपने को रखना हरा नानक दास सदा है चेरा बलावल महला पंजवा गोविंद सिमरुआ कल्याण मिट्टी उपाध भया सुख साचा अंतर जामी सिमरिया जान रहाओ जिसके जी तिन किए सुखाले भक्त जना को साचा तान दास अपने की आपे राखी भय भजन ऊपर करते माड़ भई मतराई मिटी बराई दोट दू तार काढे छाड़ सुख साजन अंत कनेरे नानक जीवे हर गुण बखान बलावन महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ भई कृपाल कार

लालन पायोरी मोहन रूप दिखावे अब मोहि नींद सुहावे सब मेरी तिखा बुझानी अब मैं सह सुमानी मीठी पिरै कहानी मोहन लालन पायोरी रहाओ दूजा बलावल महला पंजवा मोरी अहं जाए दर्शन पावत ही राचो नाथ ही सहाई संतना अब चरण गहे रहाओ आही मन अवर न पावे चरनावे चरनावे उलझो अलम करंद कमल ज्यों अन रस नहीं चाहे इकै हर लाहे अन ते टूटियै रिख ते छूटियै मन हर रस घूटियै संग साधु उल्टी।

सतगुरु प्रसाद। दुख हरता हर नाम पछानु, अजामल गन का जय सिमरत, मुक्त पहि जी जानो रहाओ। गज की त्रास मिटी शिन्हु मैं, जब ही राम बखानो। नारद कहत सुन त्रू बारक, भजन माही लपटानो। अचल अमर निरपय पद पायो, जगत जाहि हैरानो। नानक कहत भगत रसक हर, निकट ताहि तुम मानो। बलावल महला नौवा, हर के नाम बिना दुख पावै। भगत बिना सहसा न चूकै, गुर इउ भीद बतावै रहाओ। कहाँ पहो तीर्थ व्रत किए, राम शरण नहीं आवै। जोग जग नहफल तै मानो, जो प्रभ जस बिसरावै। मान मोह दोनों को पर, हर गोविंद के गुण गावै। कहो नानक ए बिद को प्राणी, जीवन मुक्त कहावै। बलावल महला नौवा, जा मैं भजन राम को नाही, ते नर जन्म कारत खोया। जय राखो मन माही रहाओ। तीर्थ करे व्रत फुन राखे, ने मनुआ बस जाको। नैफल तरम ताए तुम मानो, साज कहत।

भगतहीन जो प्राणी। कल मैं मुक्त नाम ते पावत, गुर जै भेद बतावै, कहो नानक सोई नर गुरुआ, जो प्रभ के गुण गावै। बिलावल अष्टपदियां महला पहला, कर दसवां एको ओंकार, सतगुर प्रसाद निकट वसै देखै सब सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई, बिन पै पै भगत न होई, शब्द रते सदा सुख होई। ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम, गुरमुख पावस रस रस मान रुहाओ। ज्ञान ज्ञान कथे सब कोई, कथ कथ बाद करे दुख होई, कथ कहने ते रह न कोई, बिन रस राते मुक्त न होई। ज्ञान ध्यान सब गुरते होई, साची रहत साचा मन सोई। मन मुख कथनी है पर रहत न होई, नावो पूले थाओ न कोई। मन माया बंध्यो सर जाल, घट घट व्याप रहो बिखनाल, जो आंजै सो दिसे काल, कारज सी दूर दे सुमाल। सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लाई, मन मुख हो में पत गवाई, आपे करते भगत कराई, गुरमुख आपे दी वड्याई। रहण अंधारी निर्मल जोत, ना बिना झूठे।

मन मुख जोनी दुख सहामं, बंधन टूटे एक नाम बसामं, मन्ने नाम सच्ची पत पूजा, किस वेखा नाही को दूजा, देख कहो पावे मन सोई, नानक कह अवर नहीं कोई। बलावल मोहल्ला पहला, मन का कहया मनसा करे, इह मन पुन पाप उच्चरे, माया मदमाती त्रिपत न आवे, त्रिपत मुक्त मन साचा पावे, तन धन कलत सब देख अभमाना, बिन नावे किस संग न जाना।

माया मद पिया बिन गुर भगत नाई सुख थिया सूकर स्वान गर्द मंजारा पशु मलेश नीच चंडाला गुर ते मुंह फेरे तिन जोन पवाईऐ बंधन बांध्या आईऐ जाईऐ गुरसेवा ते लह पदार्थ हृदय नाम सदा किरतार्थ साची दर गै पूछ न होए माने हुक्म सीजै दर सोए सतगुर मिलै ता तिस का जाणै रह रजाई हुक्म पछाणै हुक्म पछाण सचै दरवास काल बकाल शब्द पै नास रह अतीत जाणै सब तिसका तन मन अर्पै है इहो जिसका ना ओ आवै ना ओ जाए नानक साचे सा सुमाए बिलावल महला तीजा अष्टपदी कर दसमाए को ओंकार सतगुर प्रसाद जग कौआ मुख चुंच ज्ञान अंतर लोभ झूठ अभिमान बिन नावै पाज लहग निधान सतगुर सेव नाम बसै मन चीत गुर पेटे हर नाम चितावै बिन नावै होर झूठ परीत रंगाओ गुर कह आसा कार कमावो शब्द चीन सहज कर आवो साचै नाई वडाई पावो आप न बूझै लोक बुझावै मन का अंधा अंध कमावै दर कर महल ठौर कैसी पावै हर ज्यो सेविय अंतर जामी खट खट अंतर जिसकी जोत समानी तिस नाल क्या चलै पहनामी साचा नाम साचै शब्द जानै आपै आप मिलै चूकै अभिमानै गुरमुख नाम सदा सदा वखानै सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई औगुण काट पापा मत खाई कंचन काया ज्योति जोत समाई सतगुर मिले वड्डी वड्याई दो काटे हृदय नाम वसाई नाम रते सदा सुख पाई गुरमत मान्या करनी सार गुरमत मान्या मोख द्वार नानक गुरमत मान्या परवार साधार बलावल महला चौथा अष्टपदियां कर ग्यारवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद आपे आप खाए हो मिटे अन दिन हर रस गीत गवैया गुरमुख परचय कंचन काया निरपो ज्योति ज्योत मलैया मैं हर हर नाम आधार रमैया खिन पल रह ना सको बिन नावे गुरमुख हर हर पाठ पढ़िया रहाऊ एक ग्रहो दस द्वार है जाके एनस तस्कर पांचो चोर लगैया धर्म अर्थ सब हिरले जावे मनमुख अंदले खबर न पैया

गुर के शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोहता, केवट शब्द गुर पार लंघैया। जम जगाती नेड़ ना आवे, ना को तस्कर चोर लगैया। हर गुण गावे सदा दिन राती, मैं हर जस कहते अंत न लहिया। गुरमुख मनुआ एकत कर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी दर्श नैनी देख दर्स मन तृप्तै, सर्वन बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है पीने, रस रस राम गोपाल रुपैया। त्रै गुण माया मोहि व्यापी, तुरिया गुण है गुरमुख लहिया। एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवै सब ब्रह्म पसरिया। राम नाम है जोत सबाई, गुरमुख आपे लख लखैया। नानक दीन दयाल पै है, भगत पाए हर नाम सुमैया। बिलावल महला चौथा। हर हर नाम शीतल जल त्यावो, हर चंदन वास सुगंध गंधैया। मिल सत संगत परम पद पाया, मैं हिरड पला संग हर भैया। जप जगनाथ जगदीश गुसैया, शरण परे से जन उबरे। ज्यों प्रहलाद उधार सुमैया रहाओ। पार अठारह मैं चंदन उत्तम, चंदन निकट सब चंदन हुईया। साकत कूड़े ओब सुख हुए, मन अवमान विछड़ दूर गईया। हर गत मित करता आपे जाने, सब विद हर हर आप बनैया। जे सतगुर पेटे सो कंचन होवै, जो तुर लिखिया सो मिटे ना मिटैया। रतन पदार्थ गुरमत पावै, सागर भगत भंडार खुलैया। गुर चरणी इक शरदा उपजी, मैं हर गुण कहते तृप्त ना पहिया। परम बैराग नित नित हर त्याई, मैं हर गुण कहते पाव नी पहिया। मैं हर गुण कहते भाव नी कहिया, बार बार खिन खिन पल कहिया। हर पार न पावे परै परैया। शास्त्र वेद पुराण पुकारे, धर्म करो खट कर्म दृढ़िया। मनमुख पखंड परम बिगूते, लोभ लहर पाव नाव पार बढ़िया। नाम जपो नामे गत पावो, सिमरत शास्त्र नाम दृढ़िया। होमे जाए त निर्मल होवै, गुरमुख परचय परम पद पैया। ये जग वर्ण रूप सब तेरा, जित लावै से कर्म कमैया। नानक जंत वजाए वाजै, जित पावै तित राहे चलैया। बिलावल महला चौथा। गुरमुख अगम गोचर त्याया, हों बल बल सतगुरु सतपुरखैया। राम नाम मेरे प्राण वसाई, सतगुर पर सर नाम सुमैया। जन की टेकर नाम टकैया, सतगुर की तर लागा जावा। गुर कृपा ते हर दर लहिया रगाओ। इहो शरीर कर्म की धरती, गुरमुख मत मत तत कढैया। लाल जवे हर नाम प्रगासिया, पांडे पाओ पवै तित अया। दासन दास दास होई रही है, जो जन राम भगत निज पहिया। मन बुद्ध अर्प तरो गुर आगे, गुर प्रसादी मैं कत कथैया। मन मुख माया मोहे व्यापे, इहो मन तृष्णा जलत दिखैया। गुरमत नाम अमृत जल पाया, अगन बुझी गुर शब्द बुझैया। इहो मन नाचै सत गुर आगै, अनहद शब्द तुन तूर बजैया। हर हर उस्तत करै दिन राती, रख रख चरण हर ताल पुरैया। हर कै रंगरता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया। निज कर तार चुए अत निर्मल, जिन पिया तनि सुख लैया। मन हट कर्म करे अभमानी, ज्यो बालक बालू कर उसरैया। आवे लहर समुंद सागर की, खिन में पिन पिन टह पैया। हर सर सागर हर है आपी, ए जग है सब खेल खलैया।

चौथा सर्त गुर परचय मन मुद्रा पाई गुर का शब्द तन पसम दृढ़िया अमर पिंड पै साधु संग जन मरण दो मिट गैया। मेरे मन सात संगत मिल रहिया कृपा करो मधुसूदन माधो मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रहाओ। तजय ग्रस्त पया बनवासी एखन मनुआ टिके ना टकैया तावत ताए तदे कर आवे हर हर साधु शरण पवैया। तिया पूत छोड़ सन्यासी आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करे नहीं बूझे गुर के शब्द नरा सुख लैया।

पूजै नहीं तृष्णा, मिल संग साध दया कर लहिया। आसन सिद्ध सिखे बहु तेरी, मन मांगे रिद्ध सिद्ध चीटक चिटकैया। त्रिपत संतोख मन शांत न आवे, मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद्ध पैया। अंड जेर सेतज उत्पुज, सवर्ण रूप जी जंतो पैया। साधु शरण परै सो उबरै, खत्री ब्राह्मण सूद वै चंडाल चंडैया। नामा जय देओ कंबीर तलोचन, औजात रविदास चमियार चमैया। जो जो मिले सा

हुन मोहे मन लिया हूँ आकुल बिकुल पई गुर दिखे हों लोट पोट हो एक पैया रंगाओ हों निरकत फिरो सब दे दसंतर मैं प्रभु देखुन को बहुत मन चैया मन तन काट दियो गुर आगे जन हर मार्ग पंथ दिखैया कोई आंस दिशा दे प्रभु केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया मस्त काट दियो चरना तल जो हर प्रभ मेले मेल मलैया चल चल सकी हम प्रभ पर बोधै गुण कामन कर हर प्रभ लैया भगत बचल उमा को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछै पैया खिमा शिंगार करे प्रभ खुशियां मन दीपक गुरु ज्ञान बलैया रसरा भोग करे प्रभ मेरा हम तस्या गै जियो कट कट पैया हर हर हर कंट गै बनिया मन मोती चूर वड गहन गहनैया हर हर शरदा सेज वछाई प्रभ छोड़ न सके बहुत मन पैया कह प्रभ अवर अवर किश की जय सब बाद शिंगार फोकट फोकटैया कियो शिंगार मिलन कै ताई प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया हम चेरी तू अगम गुसाई क्या हम करें तेरे बस पैया दया दीन करो रख लेवो नानक हर गुर शरण सुमैया बलावल महला चौथा मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का खिन खिन शरदा मन बहुत उठैया गुर देखी शरदा मन पूरी ज्यों प्रहला ज्यों चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया मिल मिल सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रभ मेले मैं तसे आगे सिर कट कट पैया रहाओ रोम रोम मन तन एक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद न पैया वैदक नाटक देख भुलानी मैं हिरदे मन तन प्रेम पीर लगैया

बिन हर को दुइया कोई आन आन मेरा प्रभु मलावे हों तिस विट्टों बल बल कुम गईया अनेक जन्म के विछड़े जन मेले जा सत सत सतगुर शरण पवैया सेज एक एको प्रभ ठाकुर महल न पावे मन मुख परमैया गुर गुर करत शरण जे आवे प्रभ आई मिले खिन टील न पैया कर कर क्रिया चार बधाई मन पाखंड कर्म कपट लुभैया बेसुआ कह कर बेटा जनमिया पिता ताहि क्या नाम सुदैया पूर्व जन्म भगत कर आई गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम सुमैया प्रभ आन आन मेहंदी पिसाई आपे कोल कोल अंग लैया।

ओंकार अष्टपदी कर बारमा एको ओंकार सतगुरु प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की, उपमा जात ना कही, तज आन शरण गही रहाऊ। प्रभ चरण कमल अपार हो जाओ सद बलहार, मन प्रीत लागी ताहि तज आन कतै ना जाय। हर नाम रसना कहन मल पाप कलमल लहन दहन, चढ़ नाव

प्रभु बिकिय बिस्माद चक आनंद पूर्ण साध नैं डोलिय इत्यूत प्रभु बसे हर हर चीत तिन नाहीं नरक निवास नित सिमर प्रभु गुण।

मन मिष्ट हर हर रंग कर दया लेहो लड़ लाई नानका नाम तिहाई। दीना नाथ दयाल मेरे स्वामी दीना नाथ दयाल जाचो संतरवाल रहाओ। संसार बिखिया कूप तम अज्ञान मोह

बिन भजन होवत खी। जमदूत मां प्यान चित गुप्त करमे जान, दिन रैन साख सुनाई नानका हर शरणाई। पै पंजना मुरार कर दया पतत उधार, मेरी दुख गने ना जाई हर बिना कतै सुमाई।

जाई बड पाग नानक पाए प्रभ तुझ बिना नहीं होर मन प्रीत चंद चको ज्यों मीन जल स्यों हीत अल कमल पिन ना पीत ज्यों चकवी सूरज आस नानक चरण प्यास ज्यों तरन फरत परान ज्यों लोभी है तन दान ज्यों दूध जलै संजोग ज्यों मुख दियार्थ भोग ज्यों मात पूतै हीत हर सिमर नानक नीत ज्यों दीप पतन पतंग ज्यों चोर हिरत नसंग मैगली कामै बंद ज्यों ग्रस्त बिखी तंद ज्यों जुआर बिसन जाई हर नानक ई मन लाई कुरंक नादै नेहू चातर को चाहत मेहू जन जीवना सत संग गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्व फल हर ले कुल समूह कर तो धार संसार उतर सपार हर चरण बोहत ताहे मिल साद संग जस गाए हर पैज रखे मुरार हर नानक शरण द्वार बिलावल महला पहला थिती कर दसमा जत एको अंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर जोनी जात न जाला अगम अगोचर रूप न रेखिया खोजत खोजत कट कट देखिया जो देख दिखावै तिसको बल जाई गुर प्रसाद परम पद पाई क्या जाप जापो बिन जग दिसै गुर कै शब्द महल कर दिसै रंगाओ दूजे पाए लगे पछताने जमदर बादी आवन जाने क्या ले आवे क्या ले जाहि सिर जम काल से चोटां खाए बिन गुर शब्द न छूट सकोए पाखंड कीने मुक्त न होए आपे सच किया कर जोड़ अंडज फोड़ जो

अवर न दूजा सिरजनहारा। तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देव उपाय विशा। ज्योति जाति गणत नयावै, जिन साजी सो कीमत पावै।

टेका जी जन तेरी शरणाई सो मिला जिसलै मिलाई शुक्रवार प्रभ रहा समाई आप पाए सब कीमत पाई गुरमुख होवै सो करै विचार सत्संजम करनी है कार वर्त नेम नेता व्रत पूजा बिन बूझे सब भाव है दूजा छिनिछर वार सुन सात विचार होमा मेरा भरम संसार।

नदर कर तुद पाने आ। जाग सलो नड़िए बोला गुरबाणी राम, जिन सुन मने अड़ी अकथ कहानी राम। अकथ कहानी पद निर्वाणी, को विरला गुरु खबूजाए। ओ शब्द समाए आप गवाए, त्रिपवन सोजी सूजाए। रह तीत परंपर राता, साच मन गुण सारिया। ओ पूर रहा सर्व ठाई, नानक आयो तारिया। मैल बुलाड़िए भगत सनेही राम, गुरमत मन रहसी सीज सदेही राम। मन मार रीजा शब्द सीजा, त्रै लोक नाद पछाणे। मन डीक डोल ना जाए, कथी अपना पिर जाणे। मैं आधार तेरा तू खसम ते मेरा, मैं आधार तेरा तू खसम मेरा। मैं तान तकिया तेरा, साच सूचा सदा नानक। गुर शब्द चगर नवे रहो, छंत बिलावल मल्ला चौथा मंगल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरा हर पव से जय आया। मन सुख समाना राम, गुर तुट हर पव पाया। रंग रलिया माना राम, वड पागिया सुहागणी। हर मस्तक माना राम, हर प्रभ हर सुहाग। नानक मन पाना राम।

संत मेरा हर प्रभ रावण आईया हो मैं विख झागे राम गुरमत्या मिटाया हर हर लिव लागे राम अंतल कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम तन नानक हर प्रभ पाया पूरा बड़ भागे राम हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरा प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम अग्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगट आई राम तन नानक नाम अधार हर नाम समाई राम धन हर पवरे राविया धन हर पव प्यारा राविया जा हर प्रभ भाई राम अखी प्रेम कसाईया जो बिलक मसाई राम गुरपूरा हर मेलिया हर रसिया गाई राम तन नानक नाम विगसिया हर हर लिव लाई राम अमूर्ख मुगत मिलाया हर कृपा धारी राम तन तन गुरु शाबास है जिन हो मैं मारी राम जिन बड़ भागिया बड़ भाग है

साधु मंगल साज पया प्रवेपना गाया राम अवनाशी वर सुनिया मन उपजा चाया राम मन प्रीत लागा वड्डा भागा का मिले पूर्ण पते सहजे।

सह अटल गणया पूर्ण संजोगो राम सुख समूपया कया बजोगो राम मिल संत आए प्रभत आए भणे चर्ज जानिया मिल एकत्र होए सहज टोए मन प्रीत उपजी मानिया मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोगो बिरमंत नानक सब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा तरस पागी राम प्रभ कर आयड़ा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगले इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अनदिन वजै वाजे अहम मत मन की त्यागी बिरमंत नानक शरण स्वामी संत संग लिव लागी बिलावल महला पांचवा भाग सुलकना हर कंत हमारा राम अनहद बाजिदरा तिस तुम दरबारा राम आनंद अनदिन वजे वाजे तिन सरैण माहा तै रोग सोग ना दुख वे आपै जन्म मरण ना ताहा रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत भगत भरे पंडारा बिरमंत नानक बलहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखी सहेलड़ी हो मिल मंगल गावे राम मंत्र प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम कर प्रेम रावे तिसै पावे इक निमक पलक ना त्यागिया कै कंठ लाइय नैल जाइय चरण रज मन पागी है भगत टकोरी पाए मोह अनंत कत हूं ना धावा है बिरमंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावे बिसुन बिसुन पई ए गुण अविनाशी राम कर कै पुजा गई

अविनाशी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम ब्रह्म दिशा ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करण हारा प्रभु बिना नहीं जानिए आप करता आप भुगता आप

अंधले टोहनी वोए अनाथ प्रयनाथ ज्यों जानो त्यों रखो चतुराई मोह नाय रिजावो कै मुखो न चतुर सुगर सुजान बेती मोह निर्गुण गुण नहीं न रूप तूप ना।

रंग मेली मछली नीर ना विसरम तहन तहन हमारे भाग कहर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखै गामी आनंद मंगल रसकणा नवल नवतन नाह बाला कमन रसना।

अंतर निर्मल नाह अंधन जाग कदे न सोवे सहजे अमृत प्याह मीठा बोले अमृत बाणी अंधन हर गुण गाह निज कर वासा सदा सोंद नानक तिन मिलिया सुख पाऊं पौड़ी हर तन रतन जवेहरी सो गुर हर तन हर पासों देवाया जय किसै क्यों दिस आवे ता कोई क्यों मांग लवे जे किसै क्यों दिस आवे ता कोई क्यों मांग ले अका कोई क्यों दवाए ए हर तन जोर कीता किसे नाल ना जाए वंडाया जिसनो सतगुर नाल हर श्रद्धा लाए तिस हर तन की वंड हथ आवे जिसनो करता तुरलिख पाया इस हर तन का कोई शरीक नाही किसे का खात नाही किसे का सीप बन रोल नाही जे को हर तन की बखीली करे तिसका मुँह हर चौं कुंडा विच काला कराया हर के दिते नाल किसे जोर बखीली ना चाली द्यो द्यो नितने चढ़ा सवाया श्लोक महला तीजा जग जलंदा रख लें।

हर तिसकी आस की जमन मेरे जो समय स्वामी रह समाई मेरे मन आसा कर जगदीश कुसाई जो बिन हर आस अवरुकाऊ की कीजै सा नेफल आस वृथी जाई रहो जो दिसै माया मोह कुटुंब सम मत तिसकी आस लग जन्म गुवाई इनकै किछ हाथ नाही कहां करै बपड़े इनका वाहया कछ न वसाई मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारा तेरा कुटुंब सब छुड़ाई ये किछ आस अवर करै परमित्री मा तू जाना तेरा कितै काम आई ए आस परमित्री भाव दूजा है खिन मैं झूठ बिन सब जाई मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की जो तेरा घालिया सब थाए पाई आसा मानसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई किस किसी के हाथ नाई मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाई तन नानक की आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई गुण महला चौथा ऐसा हर सेवी नित त्याई है जो खिन में किलविक सब करे मनासा जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जे सेव्या सब भुख लहासा मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा जय जाइए त नाल मेरा स्वामी हरे अपनी पैज रखा जन दासा रहाओ जे अपनी बिरथा को अवरा पै ता आगे अपनी बिरथा बो बहुत कटासा अपनी बिरथा को हर अपने स्वामी पै जो तुमरे दुख तत्काल कटासा सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पै कही है अवरा पै कह मन लाज मरासा जो संसार के कुटुंब मित्र भाई दिस मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा जिस दिन उनका स्वाओ हो न आवे ते दिन नेड़ा को न टुकासा मन मेरे अपना हर सेव दिन राती जो तुद अपकराया दुख सुखासा तिसका प्रभासा क्यों कीजै मन मेरे जो अंति अवसर रख न सकासा हर जाप मंत गुर उपदेश लै जापो तेरे अंत छाए जिन हर पीत चितासा जन नानक अनदिन नाम जपो हर संतो ए छूटन का साचा प्रवासा कौन महला चौथा हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर शांत शीतल मन अपना जय

कुरकेशव मंत्र मनमान कुरके चरण हृदाला तारु कुर पार सदा नमस्कार मत को परम फूले संसार कुर बिन कोई ना उतर पा रहा पूले को गुर मार्ग पाया और त्या घर भक्ति लाया जन्म मरण की त्रास मिटाई गुर पूरे की बेअंत बढ़ाई गुर प्रसाद ऊर्त कमल विगास अंधकार में पै प्रगास जिनकी आसो गुर ते जान्या गुर कृपा ते मुग्ध मन मान्या गुर करता गुर करना जो गुर परमेश्वर है पी हो कहो नानक प्रभु है जनाई बिन गुर मुक्त

ठाकर के सेवक निर्मल रीत ठाकर को सेव जन संग प्रभु का सेवक नाम करंग सेवक को प्रपालनहारा सेवक की रखन कारा सो सेवक दा प्रभु धार है नांग सेव सा सा समार अपने जन का पड़ता ढाका अपने सेवक की सर पर रखा अपने दास को दे बिड़ाई

हर मंगल गांव सखी ग्रह मंदिर बनया, हर गांव मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभ आप मिलया करण कर जोग, ए श्री रा मेरेया इस जग मह आए कह क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया, दिन हर तेरा अर्च नचया सो हर मन नवसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया, कह नानक एव शरीर प्रवान होवा जिन सतगुर स्यो चित लाया, इने त्रो मेरे हो हर तुम मैं जो धरी, हर बिन और ना देखो कोई, हर बिन और ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया ए वे संसार तुम देख दे, यो हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझया जा वेखा हर एक है, हर बिन अवरना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिल ऐ देव दृष्ट होई, ए श्रवण मेरे ओ साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए, सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया होवा, रसना रस माणी सच लख विडाणी ताकि गत कही ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, साचे सुनने नो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पण वजाया, उजाया वाजा पौण नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी, एक ना दसवां द्वार दिखाया, तहनेक रूप नाव नवनिद तिसदा अंत ना जाई पाया, कह नानक हर प्यार है जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पौण वजाया, यो साचा सुहला साचा घर गावो गावो ता सोहला कर साचा, जिथे सदा सच ध्यावे सचो ध्यावे जा तुद भावे, गुरमुख जिना बुझावे यो सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे, कह नानक सच सोहला सच्चा कर गावे, अनद सुनो बड़ पागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पै सर से पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे, राम कली साध एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जगदाता सोए भगत वशल ते हलोए जियो, गुरु शब्द समावे अवर न जाने कोई जियो, अवरो न जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे, प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पद वि पावे, आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया, जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया, हर भाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो, ओ सतगुर करे हर पह बिनंती मेरी पैज रखो अरदास जियो, पैज राखो हर जनाए केरी हर देव नाम निरंजनो, अंत चल दिया होए बेले जमदूत काल निखंजनो, सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो, हर तहार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह शाबाश जियो, मेरे सिख सुनो पुत पाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो, हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे शाबाश जियो, भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे, आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गढ़ मेलावे, तुसी पुत परवाई तुसी पुत पाई परवार मेरा, मन वेखो कर निरजास जियो, तुर लिखिया परवाणा फिर नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो, सतगुर भाणा अपना बै परवार सिदाया, मत मैं पिछे कोई रोव सी सो मैं मूल ना पाया, मित पैजै मित बिकसै जिस मित की पैज भावे, तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पहनावे, सतगुरु पर तख होंदै बैराज आप टिकाया, सब सिख बंद पुत पाई रामदास पैरी पाया, अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्बाण जियो, के सो गोपाल पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण, हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे, हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो, रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो, सतगुर पुरख जे बोलिया गुरु सिखा मन लई रजाए जियो, मोहरी पुत सनमुख होया रामदास है पैरी पाए जियो, सब पवै पैर पैरी सत गुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया, कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आ निवाया,
ਹਰ ਗੁਰੇ ਬਾਣਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜਾਏ ਜੀਓ ਕਹਿ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਜਗ

तेरी राख पूर्ण काम जियो श्लोक शरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रह न जाए मन तन अंतर रब रहे नानक सहज सुभाए कर गहलीनी साजना जन्म जन्म के मीत चरने दासी कर लई नानक प्रभ हित चीत छंत रुत बरस सहेलिया सावन भादवे आनंद जियो कन उन उठे जल थल पूरे अमकरंद जियो प्रपूर रहे सर्व ठाई हर नाम नव निध ग्रह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रह रंग जागे न छिद्र लागे कृपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन भावंद जियो श्लोक आस प्यासी मैं फिरो कब पेखो गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मिलनहार बिन मिल बेशांत न उपजै तिल पल रह न जाए हर सादा शरणागति नानक आस पुजाए छंत रुत सरद अडंबरो असु कत के हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणतास जियो बिन कंत प्यारे न सुख सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतुर बेती सास बिन जैसे तना ईत उत दह दिस अलोकन मन मिलन की प्रप्यास जियो बिनवंत नानक धार कृपा मेलो प्रभ गुणतास जियो श्लोक जलन बुझी शीतल भय मन तन उपजी शांत नानक प्रभ पूर्ण मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम भय मिट गए रमन राम भरपूर छंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोह जियो जलन बुझी दर्श पाया बिनसे माया त्रोह जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर श्रृंगार सब रस गुण गाओ अलख अपेवे अपाओ भगत गोबिंद बांझत जामना साकै जोह जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तह न प्रेम बिछो जियो श्लोक हर धन आनंद कोट प्रै प्रीतम संग बने मन बांछत फल पाया हर नानक नाम पने छंत हिम कर रुत मन भावती माघ फगन गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिन त्रि भवन पय हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच्छ पुनी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री धर कंत जियो श्लोक संत सहाई जी के भवजल तारण हार सब ते उचे जानी है नानक नाम प्यार जिन जानिया सही तरे से सूरे से बीर नानक तन बलहारण हर जप उतरे तीर छंत चरण बिराजत सब ऊपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल न मनते बिसरै तज आप शरणी परे चरणी सर्व गुण जगदीशरै गोविंद गुण निध श्री रंग स्वामी आदि को आदेश जियो बिनवंत नानक मया धारो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली महला पहला दखनी ओंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओंकार ब्रह्मा उत्पत ओंकार किया जनचित ओंकार सैल जुग भये ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओनम अखर सुनो विचार ओनम अखर त्रिभवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवै चुन लै मानक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै साच संभाले बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म तरे धर्मा पुर गुणकारी मन धीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भये मनूरा धन धरनी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा करते कीमत करता जाना कह जाना गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुर रस गीत ना बाद नहीं पावै सुनिया गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच सुखाया आपे गुरमुख आपे देवै आपे अमृत पियाया एको एक है सब कोई हमै गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाणै ओ कर महल संयापै प्रभ नेड़ै हर दूर न जानो एको सृष्ट सबाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई।

सच्चे का सच्चा टोआ, त्यारे जग चौजुगी पंचायण आपे हुआ। राम कली बाणी भगता की, कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काया कलालन लाहन मेल्यो गुर का शब्द गड़कीन रे, कृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट रसदीन रे। कोई है रे संत सहज सुख अंतर जाको, जप तप देव दलाली रे। एक बूंद पर तन मत देवो, जो मद दे कलाली रे। रहाओ पवन चतुर दस पाठी कीनी, ब्रह्म अगन तन जारी रे। मुंद्रा मदक सहज तुन लागी, सुख मन पोचन हारी रे। तीर्थ वर्त नेम सुच संजम, रव सस गन है गहने देओ रे। सुरत प्याल सुधार स्वमृत, एओ महारस प्यो रे। निजर तार चुए अत निर्मल, एह रस मनुआ रातो रे। कह कबीर सगले मद छूछे, एह महारस सचो रे। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ, पाओ पाठी मन तारा। सुख मन नारी सहज समानी, पीवै पिया वनहारा। औदू मेरा मन मतवारा, उन मद चढ़ा मदन रस चाखिया। त्रिभवन पया उजियारा, रहाओ द्वय पर जोर रसाई पाठी। पियो महारस भारी, काम करो द्वय किए जलेता। छूट गई संसारी प्रगट प्रगास, ज्ञान गुर गमित सतगुर ते शुद्ध पाई। दास कबीर तास मद माता, उचक ना कब हूं जाई। तू मेरो मेरा, तू मेरो मेर, पर्वत स्वामी उठ गई मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। अब तब जब कब तू ही तू ही, हम तू प्रसाद सुखी सद ही। रहाओ तेरे भरोसे मंग हर बस्यो, तेरे भरोसे मग हर बस्यो। मेरे तन की तपत बुझाई, पहले दर्शन मग हर पायो। फुनकासी बसे आई, जैसा मगहर तैसी कासी। हम एक कर जानी, हम निरतन जो ए तन पाया। मरते फूट गुमानी, करै गुमान चुबै तिसूला। को काडन को नाही, अजय सो चोब को बिलल बिलाते। नरके कोर पचाही।

तेरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे दगाई दागे होए सो रन मैं चूजै जूझै बिन दागे पग जाई साधु होए सो भगत पछाणै हर ले खजानै पाई कोठरे मैं कोठरी परम कोठी विचार गुर दीनी बस्त कबीर को लेवो बस्त समार।

ब्राह्मण बिसर करै, जाके पाए जगत सब लागै, सो क्यों पंडित हर ना कहै, काहे मेरे बामन हर ना कै, राम ना बोलै पांडे दुजक परै, रहाओ अपन ऊच नीच कर बोजन, हठे कर्म कर उदर परै, चौदस अमावस रच रच मांगै।

डूब मरे तरवर एक अनंत डार साखा पोप पुत्र रस परिया एह अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरा करिया जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरलै जानी रहाओ पवर एक पौप रस बीदा बारे ले उर तरिया सोदै मदे पवन चकोरिया आकसे फर फरिया सहज सुन एक बिरवा उपजिया धरती जल हर सोखिया कै कबीर हों तां का सेवक जिन ए बिरवा देखिया।

तप जप तप संजम गुरमुख भोगी रहाओ बुद्ध विभूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मिलाई कर बैराग फिरो तन नगरी मन की किंगरी बजाई पंच तत् लै हृदय राखो रह निरालम ताड़ी कैत कबीर सुनो रे संतो धर्म दया कर बाड़ी कवन काज सिरजे जग पीतर जन्म कवन

पीर जन राखो, हर सेवा करो तुम्हारी। जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कै कर बजावे तूर, अनहद बजै सदा भरपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कत नाहे। रहाओ जय सिमरन नाही ननकार, मुक्त करै उतरै बहु पार। नमस्कार कर हृदय माहे, फिर तेरा वन नाहे। जय सिमरन करै तू केल, दीपक बांध तरियो बिन तेल। सो दीपक अमरक संसार, काम क्रोध बिख काढ़ी अलमार। काम क्रोध बिख काढ़ी अले मार। जय सिमरन तेरी गत होए, सो सिमरन रख कंठ परोए। सो सिमरन कर नहीं राख उतार, गुर प्रसादी उतरै पार। जय सिमरन नाही तोहे कान, मंदर होवै पटंबर तान। सेज खाली बिकसै जियो, सो सिमरन तू अन दिन पियो। जय सिमरन तेरी जाए बलाए, जय सिमरन तुझ पोहै ना माए। सिमर सिमर हर हर मन गाईए, सिमरन सतगुर ते पाईए। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास गिरास। जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाईए संजोग। जय सिमरन नाही तुझ भार, सो सिमरन राम नाम आधार। कह कबीर जाका नहीं अंत, तिसके आगे तंत ना मंत। राम कली कर दूजा, बाणी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बंद च बंधन पाया, मुक्त गुर अनल बजाया। जब नख सिख एहो मन चीना, तब अंतर मजन कीना। पवन पत उन मन रहन खरा, नहीं मृत ना जन्म जरा। रहाओ उल्टी ले सख्त सहारं, पैसिय ले गगन मजारं। बेदिय ले चक्र पयंगा, पेटिय ले राय नसंगा। चूकिय ले मोहे मयासा, सास कीनो सुर गिरासा। जब कुंभक भरपुर लीना, तै बाजे अनहद बीना। बकतै बक शब्द सुनाया, सुनतै सुन मन बसाया। कर करता उतर सपारंग, कह कबीरा सारंग।

ब्रह्म विचार ज्योति अंतर धरिया पसार रहाओ। हीरा देख हीरे करो आदेश, कह कबीर निरंजन लेख। दुनिया होशियार बेदार जागत, मुसीयत हों रे भाई निगम। होशियार पहरुआ देखत जम ले जाई रहाओ।

फर सेवर पाका मूर्ख मुक्त गवार हर भयो खांड रेत मैं बिखरियो हस्ती चुनियो ना जाई कै कबीर कुल जात पांत तज चीटी होए चुन खाई बाणी नाम देव जी की राम कली घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनियले कागद काटियले गुंडी आकाश मदे परमियले पांच जना सो बात बतोआ चीतना डोरी राखियले मन राम नामा बेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले रहाओ आनीले कुंभ पराइले उदक राज कुवार परुंदरिये हस्त बिनोद विचार करती है चीत सो गागर राखियले मंदर एक द्वार दस जाके गौ चरावन छाडियले पांच कोस पर गो

पौंडियले। अंतर बाहर काज बेरुदे चीत सो बारक राखियले। वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कवित ना गावोगे गावोगो।

चांद सूरज दोए शंकर राखो, ब्रह्म जोत मिल जाओगो, तीर्थ देख ना जल में पैसो, जी जंत ना सतावोगो, 68 तीर्थ गुरु दिखाए, घट ही पीतर नाऊंगो, पांच सहाई जन की शोभा, पलो पलो ना चहा कहावोंगो, नामा कह चित हों स्यों राता, सुन समाद समाओगो, माए ना होती बाप ना होता, कर्म ना होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कवन कहां ते आया, राम कोए ना किस ही केरा, जैसे तरवर पंख बसेरा रहा।

जर जरा सो निजर जरा जगन्नाथ स्यों गोष्ट करै चौ मुख दीवा दो जोत द्वार पलो अंत मूल बिचकार सर्व कला लयापे रहै मन माणक रतनामय रहै मन माणक रतनामय गुहै मस्तक पद्म दुआलै मणि माहि निरंजन त्रिभुवन तणि पंच

नट नारायण महला चौथा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्भैर काल मूर्त अजुनी सैभं गुर प्रसाद। मेरे मन जपैनस नाम हरे कोट कोट दोख बौकीने सब पर हर पास तरे रहाओ। हर हर नाम जपै आराधे सेवक पाए खरे किल बिख दोख सब नीकर ज्यो पानी मैल हरे। खिन खिन नर नारायण गावै मुख बोलै नर नर हरे। पंच दोख साध नगर में एक खिन पल दूर करे बड़भागी हर नाम त्यावै हर के भक्त हरे। तिनकी संगत दे प्रभ जाचो मैं मूड मुग्ध ने

हर का मार्ग गुर संत बतायो, गुर चाल दिखाई हर चाल, अंतर कपट चुकावो मेरे गुरसिखो, नेह कपट कमावो हर की हर काल, निहाल निहाल निहाल, ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए, जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल, जन नानको मत हर प्रभ दीनी, हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल, राग नट नारायण महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम हो क्या जाना क्या पावै, मन प्यास बहुत दरसावै, रहाओ सोई ज्ञानी सोई जग तेरा, जिस ऊपर रच आवै कृपा करो, जिस पुरख विधाते सो सदा सदा तुत त्यावै, कवन जो कवन ज्ञान ध्याना कवन गुनी री जावै, सोई जन सोई निज भगता जिस ऊपर रंग लावै, साई मत साई बुद्ध स्यानप जित निमख ना प्रभ बिसरावै, संत संग लग ए सुख पायो हर गुण सद ही गावै, देखियो अचर्ज महामंगल रूप किछ आन नहीं दिष्टावै।

त्याग गर्भ जोन कह आवै नट नारायण महला पंजवां दुख देख ओंकार सतगुर प्रसाद। ओलाहनो मैं काहू ना देओ मन मीठ तुहारो कियो रहाओ। आज्ञा मान जान सुख पाया सुन सुन नाम तुहारू जियो। ईहा उहा हर तुम ही देव गुर ते मंत्र दृढ़ियो। जब ते जान पाई बाता तब कुशल खेम सब थियो। सात संग नानक प्रगस्यो आ नाही रे बियो। नाट महला पंजवा जाको पई तुम्हारी तीर। जमकी त्रास मिटी सुख पाया निकसी हो मैं पीर रहाओ। तब तुब जानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बारक खीर। मात पिता साजन संत मेरे संत सहाई वीर। खुले ब्रह्म पीत मिले गोपाला हीरा बिदे धीर। बख्श पय नानक जस गावत ठाकुर गुणी गहीर। नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधारियो। आठ पैर जन कै संग बसियो मन ते नाहे विसारियो। रहाओ वर्ण चहन नाही किच पेखियो। दास का कुल न बिचारियो कर कृपा नाम हर दियो। सहज सवाय सवारियो मां विखम अगन का सागर तिससे पार उतारियो। पेख पेख नानक बिगसानो पुनः पुनः बलिहारियो। नट महला पंजवा हर हर मन मैं नाम कहियो। कोट अपराध मिटै खिन पीतर ताका दुख ना रहो। रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहियो। सगल त्याग एक लगलागी हर हर चरण गहियो। कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण परे पयो। सिमर सिमर स्वामी प्रभु अपना कौ नानक अंध पयो। नट महला पंजवा चरण कमल संग लागी डोरी। सुख सागर कर परम गत मोरी। रहाओ अंचला गहायो जन अपने कौ मन बीदो प्रेम की खोरी। जस गावत भगत रस उपजियो माया की जाली तोरी। पूर्ण पूरे कृपा निदान न पेखो होरी। नानक मेलियो दास अपना प्रीत न कबहूं थोरी। नट महला पंजवा मेरे मन जप जप हर नारायण कबू ना बिसरियो। कबू ना बिसरो मन मेरे ते आठ पैर गुण गायन। रहाओ साधु तूर करो नित मजन सब किल विक पाप कवायन। पूर्ण पूरे कृपा निद कट कट दिष्ट समायन। जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल ना लायन। द्वय कर जोड़ नानक दास मांगे तेरे दासन दास दसायन। नट महला पंजवा मेरा सर्वस नाम निदान कर कृपा साधु संग मिलियो। सतगुर दीनो दान रहाओ सुखदाता दुख पंजन हार। सुखदाता दुख पंजन हार।

कर गुरु मिलाए हम पाहन शब्द गुर तारे रहाओ सतगुर नाम दृढ़ाए अंत मीठा मैं लागर मलगारे ना मैं सुरत बजी है दै दिस हर मुस्की मुस्क गंधारे तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुर नीके बचन सुमारे गावत गावत हर गुण गाए गुण गावत गुर निस्तारे वे गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिया शंख उतारे सतगुर मिलिया परम पद पाया हों सतगुर कै बलिहारे पाखंड कर कर परमे लो पाखंड जग बुआरे बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवै जमकाल खड़ा सिर मारे उगवै दिन सयाल जाल संभालै बिख माया के बिर थारे आई रैन पया सुपनंतर बिख सुपने पी दुख सारे कलर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़े के खलवारे ताकत नर सब भूख पुखारे।

ठाकर कै मन पाहे पावनी, जम कंकर मार बदारे। मन मुक्त है कथा लोक सुनावे, जो बोले सो न विचारे। सतसंगत मिले तां दृढ़ता आवे, हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड है साबत, तब लग किंच ना समारे। जब कर मंदर आग लगानी, कड कूप कडै पनिहारे। साकत स्यो मन मेर ना कहियो, जिन हर हर नाम बिसारे। साकत बचन बिछुआ क्यों डसिए, तज साकत परै परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाए, लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने, मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचुअन कमाए, हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया, रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे, मेरे लालन लाल बुलारे। जैसा रंग दे सो हुवे, क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम राम गुर शरण प्रभु रखवारे। जो कुंचर तदुए पकर चलायो, कर ऊपर कड निस्तारे। रहाओ प्रभु के सेवक बहुत अतनीके, मन श्रद्धा कर हर तारे। मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन पावे, जन की पैज सवारे। हर हर सेवक सेवा लागै, सब देखै ब्रह्म पसारे। एक पुरख एक नदरी आवै, सब एका नदर निहारे। हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई, सब चेरी जगत समारे। आप दयाल दया दान देवै, विच पाथर की रे कारे। अंतरवास बहुत मुस्काई, भ्रम भुला मिर्ग सिंगारे। बन बन ढूंढ ढूंढ फिर थाकी, गुर पूरे करन सतारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन माने, प्रताप गुरु निस्तारे। सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया, मन बीजिया खावारे। ज्यो जन चंद्रहास दुखिया, त्रिष्ट बदी अपना घर लुकी जारे। प्रभु को जन अंतर हृदय लोचै, प्रभु जन के सास निहारे। कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए, जन पीछे जग निस्तारे। अपने आप आप प्रभु ठाकुर, प्रभु आपे सृष्ट सवारे। जन नानक आपे आप सब वरतै, कर कृपा आप निस्तारे। नट महला चौथा राम कर कृपा लो बारे। ज्यों पकर द्रौपदी दुष्टानी, हर हर लाज निवारे। रहाओ कर कृपा जाचक जन तेरे, एक मांगो दान प्यारे। सतगुर की नित श्रद्धा लागी, मोको हर गुर मेल सवारे। साकत कर्म पानी ज्यो मथिया, नित पानी चोल चलारे। मिल सतसंगत परम पद पाया, कड माखन के गटकारे। नित नित काया मजन किया, नित मल मल दे सवारे। मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए, सब फोकट चार शिंगारे। मटक मटक चल सखी सहेली, मेरे ठाकुर के गुण सारे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पाई, मैं सतगुर लख लखारे। नारी पुरख पुरख सब नारी, सब एको पुरख मरारे। सांत जना की रेन मन पाई, मिल हर जन हर निसतारे। ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया, हृदय अंतर हर जन पारे। शरदा शरदा उपाय मिलाए, मोको हर गुर गुर निस्तारे। पवन सूत सब निका करिया, सतगुर शब्द विचारे। निज कर जाए अमृत रस पिया, बिन नैना जगत निहारे। तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको, तुम मंदर हम निक कीरे। नानक कृपा करो गुर मेलो, मैं राम जपत मन धीरे। नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपार। हम पापी बहु निर्गुणी आरे, कर कृपा गुर निस्तार। रहाओ साधु पुरख।

वो सब तृष्णा भूख निवारे। पचय पतंग मृंग पचय पतंग मृग पिंग प्रिंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर सुगारे। पंच भूत सबल है देही गुर सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे मन नारद वचन पर पुकारे। राम नाम पढ़ो गत पाओ साध संगत पुरन स्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे। मेर सुमा मेर सुमेर मोर बहु नाचै जब उन वह कन कनहारे। साकत कौ अमृत बहु सिंचो सब डाल फूल बिस्कारे। ज्यों ज्यों निवै साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड़ै बिखखारे। संतन संत साध मिल रही है गुण बोलै पर पकारे। संतै संत मिलै मन बिकसै ज्यों जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान हल्क है हल्क्यो सबै बिगारे। मेरे ठाकुर मैं दीवान खबर होई गुर ज्ञान खड़ग लै मारे। राख राख राख प्रभ मेरे मैं राखो कृपा तारे। नानक मैं कर अवर नाकाई मैं सतगुर गुर निस्तारे। छक्का एक रामकली महला राग माली गौड़ी महला चौथा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्भैर अकाल मूर्त जूनी सहपं गुर प्रसाद। अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर गम अगम गात बोध आदेश हर प्रभ गाया रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया। शरणागति प्रभ पलते हर भक्त बछलनाया। प्रहलाद जन हरनाक्ष पकरया हर राख लियो तराया। हर चेत रे मन मैल पावन सब दुख पंजन राया। पाओ जन्म मरण निवार ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया। हर भक्त पावन नाम स्वामी पाओ भक्त पंजन गाया। हर हार हर उदर उर तारियो जन नानक नाम समाया। माली गौड़ी महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता सतसंगत मिल हर साध आया। गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा उड़ पागे गुर दर्शन पाया। गुर मिलया हर प्रभ जाता दुरमत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता। तन तन साध जिनी हर प्रभ पाया तिन पूछो हर की बाता। पाए लगो नित करो जुदरिया हर मेलो करम विदाता। ललाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मन तन राता। हर प्रभ आए मिले सुख पाया सब किलबिक पाप गवाता। राम रसायन नित गुरमत पाया तिनकी उत्तम वाणी पाता। तिनकी पंच पाइय बड़भागी जन नानक चरण पराता। माली गौड़ी महला चौथा सब सिद्ध साधक मुन जना मन पावनी हर त्यायो त्यायो ए। अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी हर लख गुरु लखायो। रहाओ हम नीच मदम कर्म किए नहीं चेत्यो हर रायो। हर आन मिल्यो सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो। प्रभ मस्तक तुर लिखिया गुरमुति हर लिव लायो। पंच शब्द दरगाह बाजया हर मिल्यो मंगल गायो।

0: पुर गुर चरण मन में लायो, हर राम नाम रहो लागो, जन नानक नाम समायो, माली गौड़ी महला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रवास पया गुर पाया, हर जपियो परम पाव पागा, रहाओ पै पाए भगत लागो, मेरा हियरा मन सोयो गुरमत जागा, किर बख खीन पे शांत आई, हर ओर धारियो बड़पागा, मन मुख रंग सुंभ है कछुआ, ज्यों कुसम चार दिन जागा, दिन मैं बिन सजाए प्रतापै, डांड धर्म राय तां लागा, सत संगत प्रीत साध अत गुड़ी, जो रंग मजीठ बहु लागा, काया कापर चीर बहु फारे, हर रंग नाल है सुभागा, हर चार्यो रंग मिलै गुर सोभा, हर रंग चलू लै रंगा, जन नानक तिनके चरण पखारे, जो हर चरणी जन लागा, माली गौड़ी महला चौथा, मेरे मन भज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नाम, मत गुरमत राम रसाला, रहाओ गुरमत नाम त्याई हर हर, मन जपिए हर जपमाला, जिनकै मस्तक लिखिया हर मिलिया, हर हर जिनकै मस्तक लिखिया हर मिलिया, हर बनमाला जिन हर नाम ते आया, तिन चूके सर्व जंजाला, तिन जम नेड़ ना भी गुर राखे हर रखवाला, हम बारक किछु ना जानू, हर मात पिता प्रतपाला, कर माया गन नित मेलते, गुर राखे दीन दयाला, बहु मैले निर्मल होया, सब किलविख हर जस जाला, मन अनंद पया गुर पाया, जन नानक शब्द निहाला, माला गौड़ी महला चौथा, मेरे मन हर पज सब किलविख काट, हर हर उर तारियो गुरपुरै, मेरा शीश की जय गुर वाट, रहाओ मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावै, तिस मन देवो कटकाट, हर साजन मिलियो गुरपुरै, गुर बचन बिकानो हट हाट, मकर प्राग दान बहु किया शरीर दियो अधकाट, बिन हर नाम सो मुक्त न पावै, बहु कंचन दीजै कटकाट, हर कीर्त गुरमत जस गायो, मन उगरे कपट कपाट, त्रिकुटी फोर परम पौ पागा, लजपानी मुक्ति माट, कल युग गुरपुरा तिन पाया, जिन तुर मस्तक लिखे लाट, जन नानक रस अमृत पिया, सब लाथी भूख तिखाट, छक्का एक महला, माली गौड़ी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रे मन टहल हर सुख सार, अवर टहला झूठिया नित करै, जम सिर मार, रहाओ जिना मस्तक लिखिया, ते मिले संगार, संसार पौजल तारिया, हर संत पुरख पार, नित चरण सेवो साधके, तज लोभ मो बिकार, सब तजो दूजी आसड़ी, रख आस एक निरंकार, एक भरम पूले साकता, बिन गुर आंद अंधार, तुर होवना सो होया, को न मिटन हार, अगम रूप गोबिंद कानक नाम अपार, धन धन ते जन नानका, जिन हर नामा उर धार, माली गौड़ी महला पंजवा, राम नाम
1: जाके सिमरन ते धन, जाके सिमरन छुटे बंद, जाके सिमरन मूर्ख चतुर, जाके सिमरन कुले उधर, जाके सिमरन भौ दुख हरे, जाके सिमरन आपदा टरे, जाके सिमरन मुचत पाप, जाके सिमरन नाही संताप, जाके सिमरन हृदय विगास, जाके सिमरन कमलादास, जाके सिमरन निधान, जाके सिमरत तरे निधान, पतित पावन नाम हरि, कोट भगत उधार करी, हर दास दासां दीन शरण, नानक माथा संचरण, माली गौड़ा महला पंजवा, ऐसो सहाई हर को नाम, सास सिमरन पज पूर्ण काम, रहाव बुढ़त को जैसे बेटी मिलत, बुझत दीपक मिलत, तिलत चलत अग्नि मिलत नीर, जैसे बारक मुखे खीर, जैसे रण में सखा प्रात, जैसे भूखे भोजन मात, जैसे किरखे बरस मेघ जैसे पालन शरण सेघ गरुड़ मुख नहीं सर्प त्रास सुहा पिंजर नहीं खाए विलास जैसो आंडो हृदय माहे जैसे दानो चक्की दराहे बहुत उपमा थोर कही हर अगम अगम अगा तुही ऊंच मूचो बहुत पार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा यही हमारे सफल काज अपने दास को लेहो निवाज रहाव चरण संते माथ मोर नैन दृश पेखो निस्पोर हस्त हमरे संत टहल प्राण मन तन संत बहल संसंग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसे मेरे चीत संत आग्या मन ही मीठ मेरा कमल बिकसे संत तीठ संसंग मेरा होए निवास संतन की मोहे बहुत प्यास संत बचन मेरे मन हे मंत संत प्रसाद मेरे विखे हंत मुक्त जुगत हे निधान प्रभ दयाल मोहे देव उधान नानको प्रभ दया तार चरण संतन के मेरे हृदय मजहार माली गौड़ा महला चौथ पंजवा सबके संगी नाही दूर कन करावन हाजरा हजूर रहा सुनत जियो जास नाम दुख बिन से सुखियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुंजन ताकी सेव करे जाके घर सगले समाहे जिसते बिथा कोई नाए जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जाके दीवान मे बेमोताज नहीं किछ कान सब किछ करना अपन आप रे मन मेरे तू ताको जाप सा संगत कहो बलिहार जास मिले होवे उधार नाम संग मन तनहिरात नानक को प्रभ करी दात माली गौड़ा महला पंजवां दो पते एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर समर्थ की शरणा जियो पिण तन रास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाइये जीवने का मोल रव रहा शरबत ठाई सुख मो अस्थूल आल जाल विकार तज सब हर गुणा नित गाओ कर जो नानक दान मांगे देहो अपना नाओ माली गौड़ा महला पंजवां प्रभ समर्थ देव पार कौन जाने चल तेरे किछ अंत नहीं पार रहाओ एक खिने थाप उथापता घड़ बन करने हार जेत कीन उपार्जना प्रभ दान दे दातार हर शरण आयो दास तेरा प्रभ ऊच गमुरार कड लेहो पौजल बिखमते जनान सदबलिहार बाली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वछल सदा सदा कृपाल राव आद अंते मत तुहे प्रभ बिना नाही कोय पूरिया सगल मंडल एक स्वामी सोए करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ बलिहार जाए सदा नानक देहो अपना नाओ माली गौड़ा बाणी भगत नामदेव जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तन तन ओ राम बेन बाजे मधुर मधुर तुन आनंद गाजे रहा तन तन मेघा रुमावली तन तन कृष्ण ओढे कामली तन तन तू माता देव की जय ग्रह रमैया कवलापति तन तन बांध खंड बृंदरावणा जय खेले श्री नारायणा बेन बजावे गोधन चरे नामे का स्वामी आनंद करे मेरो बाप माधो तू धन कैसो सावलियो बीठलाए रहाओ कर तरे चक्कर बैकुंठ ते आए कज हस्ती के प्राण उधारी लिया दुशासन की सभा द्रौपदी अंबर ले तुम्हारी ले गौतम नार है लिया तारी पावन केतक तारी ले ऐसा अधम जात नाम देव तो शरणागत आइए ले सबे घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रहाओ एक माटी कुंजर चीटी भाजन है बहु नाना रे अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे एकल चिंता राख नंता और जो सभा सारे प्रणवे नामा पह निकामा को ठाकुर को दास सारे राग मारू महला पहला घर पहला चौप दे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मुथ जूनी साहब अंग गुरप्रसाद श्लोक साजन तेरे चरण की होए रहा सब धूड़ नाम शरण तुहारियाँ पिख सदा हजूर शब्द पिछों राती सतड़ा नाम खसम का ले खेमे छत्र सराय चे दिसन रत पीड़े जिनी तेरा नाम त्याया तिनको सद मिले बाबा मैं करमहीन कुड़ियार नाम न पाया तेरा आंधा परम भुला मन मेरा रहाओ साध किते दुख पर फुड़े पूर्व लिखे माए सुख थोड़े दुख अगले दुखे दुख विहाय विछड़िया का क्या विछड़े मिलिया का क्या मेल साहिब सो सलाही है जिनका देखिया खेल संजोगी मिलावड़ा इन तन कीते भोग विजोगी मिल बिछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करते लेख लिखाया लिख दात जोत वड्याई मिल माया सुरत गवाई मूर्ख मन काहे करसे माना उठ चलना खसमे भाणा रहाव तज साध सहज सुख ਸੁਖ ਹੋਈ। ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਛ ਖਾਜੇ ਕਿਛ ਧਰ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈ ਸਜ ਕਾਇਆ ਪੱਟ ਹੰਡਾਏ, ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਚਲਾਏ, ਘਰ ਸੇਸ ਖਾਲੀ ਸੋਵੇ, ਹੱਥੀ ਪੌਦੀ ਕਾਹੇ ਰੋਵੇ। ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਰੀ ਪਾਈ, ਪਾ ਪੱਥਰ ਤਰਨ ਜਾਈ, ਬਹੁ ਭੇੜਾ ਬਹੁ ਬੇੜਾ ਜੀਓ ਚੜਾਹੋ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵੇ ਕਾਹੂ। ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਰਤ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚਲੀਏ। ਤੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਥਰੇ, ਜੇ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ, ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੇ ਨਿਤ ਫਾਸੇ, ਛੁੱਟਣ ਸਮੂੜੇ ਕਵਨ ਗੁਣੀ। ਕਾਇਆ ਆਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਕੋਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤੇ ਸੁਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਹੀ, ਪਾਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਦੇਵੇ ਤੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਆ। ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਬਿਮਲ ਮਜਾਰ ਬਸਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ, ਪਦਮਨ ਜਾਵਲ ਰੇ ਪਦਮਨ ਜਾਵਲ, ਜਲ ਰਸ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਦੋਖ ਨਹੀਂ ਰੇ, ਦਾਦਰ ਤੂੰ ਕਬੇ ਨਾ ਜਾਣਸ ਰੇ, ਪਖਸ ਸਿਬਾਲ ਬਸਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਲਖਸ ਰੇ ਰਾਵ, ਬਸ ਜਲ ਨਿਤ ਨਾ ਵਸਤ ਅਲੀ ਅਲ, ਮੇਰ ਚਚਾ ਗੁਣ ਰੇ, ਚੰਦ ਕਮੋਦਣੀ ਦੁਰੋਨ ਵਸਸ ਅਨਪੋ ਕਾਰਨ ਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡ ਦੂਧ ਮਦ ਸੰਚਸ, ਤੂੰ ਮਨ ਚਾਤੁਰ ਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਕਬੂ ਨਾ ਛੋੜਸ, ਪੀਸਣ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਉਂ ਰੇ, ਪੰਡਿਤ ਸੰਗ ਵਸੇ ਜਨ ਮੂਰਖ, ਆਗਮ ਸਾਸ ਸੁਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਕਬੂ ਨਾ ਛੋੜਸ, ਸਵਾਣ ਪੁੱਛ ਜਿਉਂ ਰੇ। ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਨਾਮ ਨਾ ਰਾਚੇ, ਇੱਕ ਹਰ ਹਰ ਚੰਨੀ ਰੇ, ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵ ਸਨਾਨਕ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰੇ। ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਲੋਕ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਅਸੰਖ ਹੋਏ, ਹਰ ਚੰਨੀ ਮਨ ਲਾਗ ਅਰਸ਼ਰ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸ਼ਬਦ, ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਰਭ ਗਹੇਲੀ, ਸੁਣ ਸ਼ਹਿ ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਹੇਲੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਦਨ ਸਾਖਿਸ ਆਖਾਂ ਮਾਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੈਸੇ ਰਾਖਾਂ ਮਾਈ ਰਹਾਉ। ਹਾਂ ਦੁਹਾਗਣ ਖਰੀ ਰਜਾਣੀ, ਗਇਆ ਸੋ ਜੋਬਨ ਧਨ ਪਛਤਾਣੀ, ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਮੇਰਾ, ਖਿਜਮਤ ਕਰੀ ਜਦ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ, ਪੰਡਿਤ ਨਾਨਕ ਦੇਸਾ ਹੀ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਰਹੋ ਸੁਨੇਹੀ। ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮੁਲਖਰੇ ਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਿਕਾਨਾ, ਜੇ ਤਲਾਇਆ ਤੇ ਤਲਾਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਕਿਹਾ ਚਤੁਰਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾਓ। ਮਾਂ ਲਾਲੀ ਪਿਓ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ, ਹੋਂ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ, ਲਾਲੀ ਨਾਚੇ ਲਾਲਾ ਗਾਵੇ, ਭਗਤ ਕਰੋਂ ਤੇਰੀ ਰਾਇਆ, ਪੀਹੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ, ਖਾਏ ਤਾਂ ਪੀਸਣ ਜਾਓ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪੈਰ ਮਲੋਵਾਂ, ਜਪਤ ਰਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਓ, ਲੂਣ ਰਾਮੀ ਨਾਨਕ ਲਾਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੂੰ ਤੁਧ ਵਡਿਆਈ, ਲੂਣ ਰਾਮੀ ਨਾਨਕ ਲਾਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਧ ਵਡਿਆਈ, ਆ ਜਗਾ ਦਇਆ ਪਰਦਾਤਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਣਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵੇਚਾਰਾ, ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਕਾ, ਨਾਨਕ ਬੋਰਾ ਨਾ, ਓ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਰਹਾਉ, ਤੋ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਪਹਿਰ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਏਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਤੋ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਏਕਾ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਖਸਮ ਕਾ ਦੂਜੀ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਾਏ, ਤੋ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ। ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਧਨ ਸਰਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਮਨਮੁਖ ਫਿਰੇ ਸੇ ਜਾਣੇ ਦੂਰ, ਸੋ ਧਨ ਵੱਖਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਹਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਇਹ ਧਨ ਜਲੇ ਨਾ ਤਸਕਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਨਾ ਇਹ ਧਨ ਡੁੱਬੇ ਨਾ ਇਸ ਧਨ ਕੋ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਇਸ ਧਨ ਕੀ ਦੇਖੋ ਵਡਿਆਈ, ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੇ ਅੰਧਿਨ ਜਾਈ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਨੂਪ ਸੁਣੋ ਨਰ ਭਾਹੀ, ਇਸ ਧਨ ਬਿਨ ਕਹੋ ਕਿਨੇ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ, ਪੰਡਿਤ ਨਾਨਕ ਕੱਥ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਨ ਪਾਏ। ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੂਰ ਸਰ ਸੋਸ ਲੈ, ਸੋਮ ਸਰ ਪੋਖ ਲੈ, ਜੁਗਤ ਕਰ ਮਰਤ ਸੋ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਜੈ, ਮੀਨ ਕੀ ਚੱਪਲ ਸਿਉ ਜੁਗਤ ਮਨ ਰਾਖੀਐ, ਉਡੇ ਨਾ ਹੰਸ ਨੈ ਕੰਧ ਸ਼ੀਜੇ, ਮੂੜੇ ਕਾਇਚੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾ, ਨੈ ਚੀਨਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬੈਰਾਗੀ ਰਹਾਉ, ਅਜਰ ਗੌ ਜਾਰ ਲੈ।

अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बाहर सिख संग करो, ये सुत शरणी पर तिनके दुष्ट दुख तुम्हें मरे, जो कल को एक

कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दिनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंतपुनी मन आसा, करी दया सतगुरु गुणतासा, दुख नाठे सुखाए समाए, ढील न परी जगुर फरमाए, इच्छ पुनी पूरे गुर मिले, नानक ते

कोट विघन हिरे खिन माहे, हर हर कथा सास संग सुनाहे, पीवत राम रस मृत गुंजास, जप हर तन मिटी खुतास राओ, सर्व कल्याण सुख से निदान, जाकर देव से भगवान, अखर मंत्र तंत्र सब चार, करने हार हृदय में तार, तो सब परम अजो पार ब्रह्म।

0: जाही।
1: कर कृपा संत मिले मोहे तिनते पितीर जपाया।
0: संति मंत जियो मोह निरपहो गुर का शरण कमाया।
1: जीत ले ओ महा बिखादी सहज सहेली बाणी।
0: ओ नानक मन पया परगासा पाया पर निर्वाणी।
1: बुलावला मल्ला पंजमा सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव।
0: न लागे जप लख भेव धरत पनीर भई गुण गाए दुर्त गया हर नाम ध्याए रहाओ।
1: सबनी थाई रव्या आप आद जुगात जा बड प्रताप।
0: गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघन होए सब थाई उठे।
1: सब सुख पाए सतगुरु तुठे पार ब्रह्म पे पार ब्रह्म प्रपै रखवाले जिथे किथे दिसे नाले नानक दास खसम परत पाले।

0: न पाई।
1: सतगुर पूरा भेटिया दिन बंत बनाई।
0: राम नाम औखद दिया एक लिव लाई रहाओ।
1: राख लिए तुम रखन हार सब ब्याल मिटाई।
0: कोह नानक कृपा पई प्रपे सहाई।
1: बिलावल महला पंजवा अपने बालक आप रखियन पार ब्रह्म गुरुदेव।
0: सुख शांत सहज आनंद पय पूरन होई से पई सेव रहाओ।
1: सर्व भगत जना की बेनती सुनी प्रभाप।
0: रोग मिटाए जीवालियन जंका बड़ प्रताप।
1: दोख हमारे बख्शियन अपनी फल तारी।
0: मन वांछित फल दितियन नानक बलहारी।
1: बिलावल महला पंजवा ताप लाहे अगुर सृजन हार। सतगुर अपने को बल जाई बिन पैज रखी सारे संसार हाओ।
0: कर मस्तक तार बालक रख लीनो अमृत नाम महारस दीनो।
1: दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगाह परवान।
0: बुलावल महला पंजमा ताप पाप ते रखे आप। शीतल पे गुर चरनी लागे राम नाम हृदय में जाप रहाओ।
1: कर कृपा सुप्रभ दीने जल सुधार नवखंड प्रताप।
0: दुख बिन से सुख अनंत प्रवेशा तृष्ण बुझी मन तन सच त्राप।
1: नाश को नाश शरण समर्था सगल श्रेष्ठ को माई बाप।
0: भक्त विशल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप।
1: सोरठ महला पंजवा कर स्नान समय प्रभ अपना मन तन भये रोगा।
0: कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा प्रगटे भले संजोगा।
1: प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या गावो सुनो पढ़ो नित पाई गुर पूरे तू राख्या रहाओ।
0: सच्चा साहब अमित बड़ाई भक्त विशल दयाला।
1: संता की पैर खराया
0: हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो।
1: जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोविंद गावो।
0: सुनिए अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई।
1: प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई।
0: सोठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के।

0: गावन तुद नो चित गुप्त लिख जान निख लिख धर्म बिचारे गावन तुद नो इंद्र इंद्र आसन बैठे देव ध्यान दर नाले गावन तुद नो जति सती संतोखी गावन तुद नो वीर करारे गावन तुद नो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मच पयाले गावन तुद नो जोध महाबल सूरा गावन तुद नो खानी चारे सही तुद नो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाए रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन पाई
1: कर देखा कीता अपना
0: जो तिस भाव है सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई
1: ओ पातशाह
0: आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए के

So हर जन केवड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास राग गुजरी महला पंजमा काहे रे मन चित वै उद्दम जा आहर हर जियो परिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया जनन पिता लोक सुत बंता कोई ना किस की तरिया उडे उडा वैसे कोसा तिस पाछे बचरे शरिया

पातशाही दसवीं कबेओ बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो।

जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। नमस्कार ते सही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप अपनी बूझ उचारे। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताको कृपा हने अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कई भूपा। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख वार सिख संगरो। जे अस्तो तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तवै मरे। जो कल को एक बार त्याए है, ताके काल निकट नह है। कृपा दृष्ट तन जाहे निहरियो, ताके ताप तन कमो हरियो। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल पास ते ताहे उबारा।

सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कौ आंख तरे नहीं अन्य। सिमरत शास्त्र भेद सबै भव भेद कहे हम एक न जान्य।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर ता पाया सहज सेती मन वचियां वधाइयां शब दो तंगावो हरी केरा मन जिनी बसाया हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले करता तेरा सब किश है जिस दे सो पावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया सदा कुरबान कीता गुरु बेटो जिस दिया ए वड्याइया बाजे पांच शब्द तित कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया तुर करम पाया तुद जिन कौसे नाम हर कै लागे।

रख अग्नि उदर माहे पौ जल बिखम सगा गुर शब्दी पार पाए जिन कौ लगी प्यास अमृत से ही खाए कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाहे सबसे नो कृपाल समा

सीता का तो ऐसा ही मानस की लड़ते ही सत्याग्रह जियो अपना मेल प्रयास अपने बच्चों के सिर पे अपना अंग संग सहाई होना चढ़दिया बलों च अपना दरकार पासा नाम का बाणी का ओट आसरा बख्शना अपने बच्चे भुपिंदर सिंह देह रोग का बख्शो अंग संग सहाई हो अपनी सेवा लवो दरकार पासा अपना हुक्मनामा बख्शे अपने बच्चों प्यार दो सही गुरमुख प्यारे मिलने जिला मिल

जय सत गुर लग प्रभ पाईऐ, सो सत गुर सिमरो नरो, सोई रामदास गुर बल भण, मिल संगत धन धन करो। जे सत गुर लग प्रभ पाईऐ, सो सत गुर सिमरो नरो। अमै दृश्य शुभ करै अरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस।